दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति गीत या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे गालो श्रोताओं का समाचार।

हर सुबह एक नई उम्मीद और एक नई रोशनी लेकर आती है। हमारा कल चाहे जैसा भी बीता हो, रात को हम कितनी भी चिंताओं के साथ सोए हो, लेकिन सुबह की नई धूप की किरणें हमें फिर से एक नया हौसला देती है। ये एहसास दिलाती है कि आज एक नया दिन है, कुछ नया करने का, कुछ बेहतर सोचने का। कल की बातों को छोड़कर आज हम एक नई कहानी लिख सकते हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ हम हर सुबह आपके साथ लेकर आते हैं सुबह सवेरे कार्यक्रम, जहां बातों का सिलसिला होता है सेहत, सुकून और एक बेहतर जीवन का। यहां हम आपको देते हैं कुछ हेल्थ टिप्स और जरूरी जानकारियां जो आपको स्वस्थ और एनर्जेटिक रखने में थोड़ी सी मदद जरूर करेगी।

दोस्तों, आजकल हम में से बहुत से लोग सुबह उठते ही सीधा चाय या कॉफी की तरफ भागते हैं ताकि नींद और सुस्ती दूर हो जाए। लेकिन ज्यादा कॉफी पीने से रात की नींद भी खराब हो सकती है और शरीर और ज्यादा थका हुआ महसूस कर सकता है। लेकिन एक और बेहतर तरीका है सुबह खुद को जगाने का, वो है सुबह की कसरत। सुबह थोड़ी देर शरीर को चलाने फिराने से ताजगी आती है, शरीर में फुर्ति बनी रहती है और पूरे दिन ऊर्जा से भरा हुआ लगता है। और सबसे अच्छी बात, वही सेहतमंद आदत सबसे बेहतर होता है जिसे हम रोज निभा सकते हैं। सुबह कसरत करने से खून का दौरा तेज होता है, नींद की सुस्ती दूर होती है और शरीर जल्दी सक्रिय हो जाता है। अध्ययन में भी ये देखा गया है कि सुबह की कसरत दिन भर ऊर्जा बनाए रखने में मदद करती है। इसके लिए मुश्किल या भारी कसरत जरूरी नहीं, हल्की फुल्की गतिविधि भी काफी होती है।

तो चलिए आज इस कार्यक्रम के तहत हम जानते हैं कुछ आसान मॉर्निंग एक्सरसाइजेस और उनके फायदों के बारे में। सबसे पहले स्ट्रेचिंग से शुरुआत करिए। सुबह उठते ही हल्की स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी होता है। इससे शरीर की अकड़ कम होती है और मांसपेशियां धीरे धीरे खुलने लगती है। आप गर्दन को धीरे धीरे घुमाइए, कंधों को स्ट्रेच कीजिए, हाथों को ऊपर खींचकर बॉडी को लंबा कीजिए और पैरों को हल्का स्ट्रेच दीजिए। सिर्फ 5 मिनट की स्ट्रेचिंग भी शरीर को हल्का और ताजा महसूस करवा सकती है।

सुबह की ताजी हवा में हल्का टहलना या धीरे धीरे दौड़ लगाना और दिल और फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इससे खून का दौरा बेहतर होता है और शरीर में ऊर्जा का एहसास होता है। अगर आप नए हो तो पहले हल्का वॉक कीजिए, फिर धीरे धीरे जॉगिंग शुरू कर सकते हैं। जंपिंग जैक्स एक आसान और मज़ेदार कसरत है जो पूरे शरीर को सक्रिय कर देती है। हाथ और पैर खोलकर जंप करना हार्ट रेट को बढ़ाता है और सुस्ती को दूर करता है। सिर्फ 30 या 50 जंपिंग जैक्स भी आपको एनर्जेटिक फील करवा सकता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घर पर बिना किसी मशीन या ज्यादा जगह की भी आसानी से किया जा सकता है।

दोस्तों आप योगा भी कर सकते हैं। योगा सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी शांत और संतुलित बनाता है। सुबह योगा करने से शरीर में लचीलापन बढ़ता है और मांसपेशियों की जकड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। तदासन, वज्रासन और बालासन जैसे आसन शरीर को स्ट्रेच करते हैं और मन को शांत देते हैं। सांस की क्रिया के साथ योगा करने से शरीर में ऑक्सीजन का दौरा और बेहतर होता है। इससे मन शांत रहता है और दिन भर गुस्सा, तनाव और चिंता कम महसूस होती है। कई लोग सुबह योगा को अपने मी टाइम की तरह भी देखते हैं, जहां कुछ मिनट खुद के साथ शांति से बिताए जा सकते हैं।

दोस्तों, मैं आपको और भी मॉर्निंग एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इसके बीच सुन लेते हैं सुबह सवेरे कार्यक्रम का पहला गीत ब्रह्मास्त्र फिल्म से रसिया अरिजीत सिंह की आवाज में।

दोस्तों आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे। और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे कुछ मॉर्निंग एक्सरसाइजेस की और साथ ही उनके फायदों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपके पास साइकिल है तो आप साइकिल भी चला सकते हैं। साइकिल चलाना एक हल्का लेकिन बहुत असरदार व्यायाम माना जाता है। ये दिल को मजबूत बनाता है, पैरों की मांसपेशियों को सक्रिय करता है और शरीर को धीरे धीरे पूरी तरह जगाता है। सुबह कॉलोनी या पार्क के आसपास हल्की साइकिल सवारी करना सिर्फ शरीर को ही नहीं मन को भी खुश कर देता है। ठंडी हवा और सुबह का शांत माहौल पूरे दिन के लिए अच्छा महसूस करवाता है। और सबसे अच्छी बात, साइकिल चलाना घुटनों पर ज्यादा जोर भी नहीं डालता। और साथ ही दोस्तों, आप उथक बैठक यानी स्क्वाट्स भी कर सकते हैं। स्क्वाट्स पैरों, जंघों और कमर के नीचे वाले हिस्सों को मजबूत बनाते हैं। इसके लिए पैरों को कंधों के बराबर रखिए और धीरे धीरे नीचे बैठकर फिर सीधा खड़े हो जाइए। शुरुआत में आप 10 या 15 स्क्वाट्स कर सकते हैं और जब आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए तो धीरे धीरे संख्या बढ़ा सकते हैं। ये कसरत शरीर का संतुलन सुधारने में भी मदद करती है और पैरों में ताकत बढ़ाती है।

तो दोस्तों, सुबह की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और कसरत आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इससे शरीर में फुर्ती बनी रहती है, मन खुश रहता है और दिन भर काम करने में भी मजा आता है। तो इस वक्त अगर आप हमें सुन रहे हैं तो क्यों ना थोड़ी स्ट्रेचिंग और हल्का एक्सरसाइज से शुरू की जाए। और कल सुबह अलार्म बंद करके दोबारा मत सो जाइएगा। उठ जाइए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, हल्का व्यायाम कीजिए और अपने दिन की एक सेहतमंद, ताजगी भरी और

तो दोस्तों, आज की स्वस्थ जीवन शैली की बातचीत में इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे और कुछ जानकारियों के साथ। तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत। परदेश फिल्म से दो दिल मिल रहे हैं कुमार सानू की आवाज में।

इसी के साथ ही दोस्तों सुबह सवेरे कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में यानी 8:10 पर आप सुन पाएंगे अपतनीय श्रोताओं का समाचार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए सुनते हैं अपतानी श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: Si akas pani itana ga jiro kla apten pugam mulim bali sun kapi japa puilu kunum tapato do sro pumi lu kulin chigin take. Prime Minister Narendra Modi ngunga India ganda ho Prime Minister pa ab japa dukang kula sala mubdo kula loko lamudo. Moga Prime Minister pa ka duk ne sololo e pa 4399 des alomi duja kula India ho mo dukang jala mudo. मो कहावा पाजलन नेहरू इंडिया हो दुकान जापा साला दुते नरेंद्र मोदी का उन का भारत गंदा हो प्राइम मिनिस्टर्स पका दुकान जापा दुनिया पुकासा यूनियन कैबिनेट दल होकला 7 पॉइंट रेजुलेशंस अको एडोप मुकुला प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी मलामी मलांजाय अनु उरोपा कांग्रेसन बिप्सा हला मोल यूनियन कैबिनेट अतंदाजी दिशन लाला मत Union Science and Technology का मिनिस्टर जितेंद्र सिंह सुबियो वीक एजुकेशन कंक्लेव 2026 हला न्यूज New Delhi hoka paralika dai paka hatachak sako dugun selamu koso lupa mene ne seka danyale nye ho Modi government ho National Education Policy NEP 2020 hoka mulingan he ayajapa mulimbila mute hela lupa la mene minister lupa mene ne seka policy ho students atami mo luka paralika agin ho khibe hara attitude bitala ka mune he se policy mut ko akoja mute hela lupa la mute उनका स्टेट चीफ सेक्रेटरी मनीष कुमार सबुलियो रोमपिंजे कुन स्टेट लेवल नारकोट मीटिंग्स में दुगला होहरा एक्शन टेकन रिपोर्ट्स पोता मुलामी तकाकुला रिव्यू मीटिंग मुलामी दुतागला मत चीफ सेक्रेटरी मीटिंग सो उनका निमुया पा आतामी एवरनेस प्रोग्राम्स मुग बिला मोरुमी पढ़ालिखा एजुकेशन दलियो मकोदा हो आतो का हालुग्रा कम्युनिटीज मान कने कामो मुलुमाला इंगेज मुरो कोदा 10% सामान्य ड्रग्स मेडिसिन यूस मनु मुलामी इचुचे मतिम कोला मकिंदो हला मोदा जक तोंसला मते ओसका पुगो पचिप सेक्रेटरी सजता का नोडल डिपार्टमेंट नशा मुक्त भारत अभियान दाई पका दून बो मुलामी डिप्टी कमिश्नर्स लोका हो पुलिस अथॉरिटीज अतामी सका पुगो पा पासे पा मेला मोलम कपने कोऑर्डिनेशन सो ला बोला मतो ते हला मोदा जक डायरेक्शन बिलिला मते उनका स्टेट चीफ मिनिस्टर्स पेमा खांडू उनका भारत गंदा का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में उन अरुणाचल स्टेट में बॉर्डर स्टेट्स होपा सिमी कागे तागे बिकिंडो हला कोंते हेमापा उनका स्टेट्स में इंडिया गंदा होका खन आको जापा हेला कागे तागे बिला मुकोपा पायर पचो हला असंकुला मत चीफ मिनिस्टर्स उनका प्राइम मिनिस्टर्स में भारत गंदा हो दन्यान्यान्ये संग्यागला सुपुंबुत में का डेवलपमेंट लालिला बिला का मुन्न में अनु उरोपा असंकुला मत मोदी का लीडरशिप होकला उनका अरुणाचल स्टेट्स हो अनु उरोपा हाथा चागला ट्रांसफॉर्मेशन मलामी कपाला मदो हला लुपाला उसका पुगोपा प्राइम मिनिस्टर्स में उनु अरुणाचल मियो आयुदायपा हेम्पा हेंकांग केंदो हला लेतार हो मो में लुको कोला केला एड्रेस मला बित बुलियोंगुन का स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर पीडी सोनाला हो एमएलए हरा टूरिज्म दाई पका एडवाइजर धुन बो मोपी मियुनी इम्बासला यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर्स गजेंद्र सिंह सेकवास में न्यू दिल्ली हो पाई हाला आला मत हो हरा मो का सोशल मीडिया पोस्ट होकला लुपाला मने ने मो आन्यरो यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर्स में सिस कंगुन का अरुणाचल स्टेट दाई पका टूरिज्म दाइल्स हो इनिशिएटिव लालिना लाका मुन में तकासला मोल डिस्कस

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आप पता नहीं श्रोताओं का समाचार या आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। तो सब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट, जहां हम आपको बताएंगे आज की यानी 11 जून की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं और साथ ही राजधानी टनगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। तो कहीं जाइएगा नहीं और बने रहे हमारे साथ अरुण FM 103.1 MHz पर।

दोस्तों आइए कार्यक्रम के आरंभ में जागते हैं इतिहास के पन्नों में और जानते हैं क्यों खास है आज का दिन। भारत और विश्व इतिहास में 11 जून का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। तो आइए नजर डालते हैं 11 जून की ऐसी ही कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर। 11 जून 1509 को हेनरी सिक्स ने इंग्लैंड के राजा के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया। उनका शासन ब्रिटिश इतिहास के सबसे चर्चित युगों में से एक माना जाता है। उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 11 जून 1770 को ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक का जहाज एचएमएस एंडबर्ग ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेट बैरियर रीफ से टकरा गया। ये घटना ऑस्ट्रेलिया के खोज और मैपिंग के इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है। 11 जून 1897 को रामकृष्ण मिशन ने अपनी संगठित सेवा गतिविधियों को विस्तार किया। मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने मानव सेवा और आध्यात्मिक जागरूकता के उद्देश्य से की थी। आज भी ये संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

11 जून 1964 को साउथ अफ्रीका की एक अदालत ने नेल्सन मंडेला और उनके साथियों को राइबोनिया ट्रायल में उम्र कैद की सजा सुनाई। मंडेला ने अपार्थेड के खिलाफ संघर्ष किया और बाद में साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उन्हें शांति और समानता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। 11 जून 2010 को फीफा वर्ल्ड कप के शुभारंभ साउथ अफ्रीका में हुआ। ये पहली बार था जब फीफा वर्ल्ड कप किसी अफ्रीकन देश में आयोजित किया गया था। इस इवेंट ने पूरे दुनिया के फुटबॉल प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा।

11 जून 1866 को अलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ये भारत के सबसे पुराने हाई कोर्ट्स में से एक माना जाता है। आज भी देश की न्यायिक व्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है और कई ऐतिहासिक फैसले यहीं से आए हैं। 11 जून 1897 को महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। काकोरी कांड में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युवाओं में क्रांति की भावना जगाई। उनकी रचना सरफरोशी की तमन्ना आज भी देशभक्ति का प्रतीक मानी जाती है।

दोस्तों ऐतिहासिक घटनाओं से आज बस इतना ही। आइए लेते हैं छोटा सा संगीत अंतराल, उसके तुरंत बाद हम नजर डालेंगे राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। पहला गीत आप सुन पाएंगे वीर फिल्म का सलाम आया, रूप कुमार राठौड़ और श्रेया घोषाल की आवाज में।

जी हाँ दोस्तों, बने रहे हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। आइए कार्यक्रम में नजर डालते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियों पर। दी अरुणाचल टाइम्स की पहली हेडलाइंस है, 3 डाइड टू इंजर्ड इन लैंडस्लाइड ट्रिगर्ड रोड एक्सीडेंट। अपर सियांग जिले के मिगिंग टूटिंग रोड पर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि भूस्खलन के बाद गाड़ी लगभग 200 मीटर गहरे खाई में गिर गई। ये घटना एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में मॉनसून के दौरान यात्रा की चुनौतियों को उजागर करती है। अगली हेडलाइन है, आपियो रिजेक्ट्स HPC डिमांड्स डिमोलिशन ऑफ इलीगल स्ट्रक्चर्स। अरुणाचल प्रदेश की इंडिजिनियस यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार के हाई पावर्ड कमेटी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। संगठन ने आरोप लगाया है कि कुछ निर्माण अवैध है और उन्हें हटाया जाना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर राज्य में चर्चा और गर्म गई है। कोर्ट सेंटेंस मैन टू 20 ईयर्स जेल फॉर रेपिंग माइनर। ईटानगर की एक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी व्यक्ति को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले को बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। द अरुणाचल टाइम्स की अगली हेडलाइन है, MLA डोनेट्स व्हीकल टू स्कूल। जीरो हापोली के MLA हागे आपा ने लोअर सुबनसिरी के ओल्ड जीरो स्थित अबोतनी विद्या निकेतन को 19 सीटर व्हीकल भेंट की है। इससे विद्यालय के छात्रों और शैक्षणिक गतिविधियों को काफी सहायता मिलेगी। स्लो लोरिसेस ट्रेन इनटू सेटलमेंट्स रेज कंसर्न। रक्सिन और आसाम अरुणाचल सीमा के रिजर्व फॉरेस्ट के बंगल स्लो लोरिस जैसे दुर्लभ वन्य जीवों के मानव बस्तियों में प्रवेश करने की घटनाएं बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि हैबिटेट डिस्टर्बेंस और वनों पर बढ़ता दबाव इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। अगली हेडलाइन है, खांडू हेल्थ PM's 12 ईयर्स इन ऑफिस एज एन एरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को परिवर्तनकारी शासन और विकास का युग बताया है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। DC asks teachers to focus on result-oriented efforts। लोहित जिले के डिप्टी कमिश्नर KN दामो ने तेजो में स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के परिणाम केंद्रित प्रयास करने का आग्रह किया है।

उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के एकेडमिक परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। अगली हेडलाइन है, मीट हेल्प टू रिवाइव ट्रेडिशनल आर्ट इन पॉटरी मेकिंग। वेस्ट सियांग के दारक क्षेत्र में पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों की कला को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक बैठक आयोजित की गई। इस पहल का मकसद स्थानीय कला और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षित करना है। अगली हेडलाइन है, आईएमडी फोरकास्ट हैवी रेन थंडरस्टॉर्म्स अक्रॉस अरुणाचल। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश में व्यापक बारिश और गरज चमक के साथ आंधी की संभावना व्यक्त की है। लोगों को भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसे खतरों को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दोस्तों, राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों से आज बस इतना ही। आइए अब कार्यक्रम के अंत में आनंद लेते हैं एक और खूबसूरत गीत का। आप सुन पाएंगे गुरु फिल्म का तेरे बिना, ए आर रहमान, चिन्मय, मुर्तजा खान और कदीर खान की आवाजों में।

दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ ही मॉर्निंग इंटरटेनमेंट कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।

노여남을 금방 고르게 스테트 네서 폴리시가 알아로 그 게트웨고버리 두코네라 미팔렌 두코 2014 안영젤로 공가 프라임 미니스터 모디게 서카링아 리랍게 라쿠라 세제 로고버 안영젤링고라 영인고버 서카링아 리게퍼 쿠네라 미팔렌 두코 अरुणाचल प्रदेश के टूरिज्म मिनिस्टर पीडी सोना ला एमएलए कम एडवाइजर टू टूरिज्म मोपी मिहु मयो न्यू दिल्ली लो यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कारक सुलाखला गामा गोरोर बिर सुलारी गनी खुबला मिपादुकु सो कारक सुकुलो अरुणाचल प्रदेश लो ऑनगोइंग टूरिज्म डेवलपमेंट नोरखलो पीडी सोना ग नामांग रोर सुगुनु कुबला पीडी सोना ग सोशल मैसेज पतालो बेफालें दुखु मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लोक आईपीएस रोबिन हिबुनी सेंट क्लारेट कॉलेज जीरो लो सोशल वर्क डिपार्टमेंट लो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस गुबा अपॉइंट गेन कुबेला बेपा दुखु मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर लोको बेपा को नाम अरुणाचल प्रदेश के रिंगुला अन डिस्ट्रिक्ट गुलू निदोंग अचल बहोलक ते दुला येलो अलर्ट गु कातम पकुला बेपा दुखु सोग मो के गुना लो दोगुम दोरेक अंग तकला निदोंग अचल बहोलक ते दुला बेपा दुखु स्रुगे तागिन गाम बिनु बिन तमसंका हेबो

0: अभी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का समाचार। तागिन श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज तथा DRM 666 किलो हर्ट्ज पर। आप बने हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा हर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज।

अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार। सदाबहार कार्यक्रम का सबसे पहला गीत आप सुन पाएंगे आखिरी बाजी फिल्म का बहुत ही खूबसूरत गीत चोरी चोरी आप मेरे दिल में आई, अमित कुमार और साधना सरगम की आवाज में।

0: दिल से दिल की बात और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित बारी बारी से समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। हम लोग देंगे 8:40 पर कार्यक्रम हेलो ईटानगर के साथ।
1: घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
4: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरेखित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ

दोस्तों, इसी के साथ ही सदाबहार कार्यक्रम का ये खूबसूरत अंक यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है।

0: उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
0: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमूज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
3: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1,000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में NTA अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने NTA ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में POK की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने POK में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है, उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का POK में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खानपान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना NDA सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर सभा के इस भाग में लीजिए अब प्रस्तुत है ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हेलो ईटानगर।
2: हेलो ईटानगर।

दोस्तों, हेलो नगर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ। पहला गीत सुनते हैं गजनी फिल्म का बहका में बहका कार्तिक की आवाज में।

जी हाँ दोस्तों, बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टनकर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर। दोस्तों, सेहत से जुड़ी बातें हम रोज सुनते हैं। कभी घर के बड़े बताते हैं, कभी दोस्त सलाह देते हैं, और कभी कभी सोशल मीडिया पर कोई नई हेल्थ टिप्स वायरल हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से कितनी बातें वाकई सच होती है और कितनी सिर्फ भ्रम यानी मिथ्स होती है। आज के इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे कुछ ऐसे हेल्थ मिथ्स की जिन पर हम सालों से यकीन करते आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन बातों के पीछे की असली सच्चाई। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक वॉशरूम्स में सिर्फ टॉयलेट या टॉयलेट सीट से इन्फेक्शन हो जाता है। पब्लिक टॉयलेट्स का नाम सुनते ही कई लोग घबरा जाते हैं, और सच कहें तो ये डर पूरी तरह बेकार भी नहीं है। अगर टॉयलेट सीट साफ ना हो तो कुछ जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ मौजूद हो सकते हैं, इसीलिए हाइजीन का ध्यान रखना हमेशा जरूरी है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ टॉयलेट सीट ही इन्फेक्शन का सबसे बड़ा सोर्स नहीं है। बाथरूम के डोर हैंडल्स, फ्लश बटन्स, टेप्स, सिंक और दूसरी सर्फेसेस पर भी काफी जर्म्स हो सकती है। कई बार हम इन सर्फेसेस को छूने के बाद बिना सोचे समझे अपने चेहरे, आंखों या मुंह को टच कर लेते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाती है। इसीलिए पूरे रेस्टरूम हाइजीन पर ध्यान देना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, पब्लिक वॉशरूम्स यूज करने के बाद अच्छी तरह हाथ धोना कभी ना भूलें।

माइक्रोवेव को लेकर भी कई गलत फहमियाँ हैं। कुछ लोग मानते हैं कि माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है। माइक्रोवेव खाने को उसके मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करके हीट प्रोड्यूस करता है। ये कोई न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं होती और ना ही इससे कैंसर का रिस्क बढ़ता है। जहाँ तक न्यूट्रिएंट्स की बात है तो हर तरह की कुकिंग में कुछ न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, लेकिन माइक्रोवेव कुकिंग का समय कम करता है और पानी भी कम इस्तेमाल होता है। इस वजह से कई बार न्यूट्रिएंट्स दूसरी कुकिंग मेथड से ज़्यादा बचाते हैं। यानी अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो माइक्रोवेव एक सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प हो सकता है। बचपन में हम सब ने सुना होगा, बाल सुखा लो वरना सर्दी हो जाएगी। लेकिन साइंटिफिक तौर पर देखा जाए तो सर्दी या फ्लू किसी वायरस की वजह से होता है, गीले बालों की वजह से नहीं। अगर आप गीले बालों के साथ सोते हैं तो आपको असुविधा जरूर हो सकती है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से सर्दी नहीं होती। हाँ, लेकिन गीले तकिया बैक्टीरिया और फंगस के लिए अनुकूल माहौल बना सकता है, जो स्किन प्रॉब्लम्स या एक्ने का कारण बन सकता है। इसीलिए हाइजीन के लिए बाल सुखाकर सोना और पिलो कवर्स को नियमित रूप से बदलना अच्छी आदत मानी जाती है।

अब बात करते हैं एक ऐसे मिथ की जो शायद हम सब ने कभी ना कभी फॉलो किया होगा। खाना जमीन पर गिर गया, कोई बात नहीं, 5 सेकंड के अंदर उठा लिया तो सेफ है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक मिथ है। रिसर्च बताती है कि बैक्टीरिया को खाने पर पहुंचने के लिए 5 सेकंड का इंतजार नहीं करना पड़ता, ये प्रक्रिया लगभग तुरंत शुरू हो जाता है। यानी अगर फ्लोर कंटेमिनेटेड है तो जर्म्स पल भर में खाने तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में गिरा हुआ खाना खाने के बजाय उसको फेंक देना ही बेहतर है। और दोस्तों अक्सर हमारे शरीर पर कहीं जलते हैं तो हम सोचते हैं कि तुरंत बर्फ लगानी चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स इसकी सलाह नहीं देते। बहुत ज्यादा ठंडी बर्फ स्किन को और डैमेज कर सकती है और फ्रॉस्ट बाइट जैसा इफेक्ट भी पैदा कर सकता है। इसी तरह घरेलू नुस्खे जैसे टूथपेस्ट लगा लेना भी सही नहीं है, क्योंकि ये हीट को स्किन में ट्रैप कर सकते हैं। माइनर बर्न्स के लिए सबसे अच्छा उपाय है जली हुई जगहों को 10 से 20 मिनट तक ठंडे या नॉर्मल रनिंग वाटर के नीचे रखना। इससे जलन कम होती है और स्किन को राहत भी मिलती है।

और साथ ही दोस्तों कई लोगों को उंगलियों या जॉइंट्स क्रैक करने की आदत होती है और उन्हें अक्सर डांट भी पड़ती है कि इससे आर्थराइटिस हो सकती है। लेकिन रिसर्च के मुताबिक पेनलेस जॉइंट क्रैकिंग और आर्थराइटिस के बीच कोई सीधा संबंध नहीं।

दोस्तों, हिलर्टन नगर कार्यक्रम में हम कल फिर लौटेंगे कुछ रोचक जानकारियों के साथ, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं गब्बर इस बैग फर्म का तेरी मेरी कहानी गाना अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाज में।

दोस्तों इसी के साथ ही हेलो ईटानगर कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: वन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे जो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की भी सराहना की और ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत तेजी से खेलों का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि एनडीए सम्मेलन में श्री मोदी को देश का सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर केंद्र शासित प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की सराहना करते हुए दक्षिण कश्मीर के लोगों की सुविधा के लिए अनंतनाग में इसका ठहराव देने का अनुरोध किया। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कारों की घोषणा की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। विश्व कप के इतिहास में पहली बार 48 टीमें प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी The news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों पेश है हमारा अगला कार्यक्रम फिल्मी गपशप। और रोजाना की तरह आज भी इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सिनेमा की दुनिया की ताजा खबरें, नई रिलीज फिल्मों के अपडेट्स, ओटीटी अपडेट्स, बॉलीवुड के सबसे चर्चित सितारों की गपशप और साथ ही आप सबको सुनवाएंगे कुछ खूबसूरत नगमे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का फिल्मी गपशप सेगमेंट और सबसे पहले नजर डालते हैं हाल ही में रिलीज हुई कुछ फिल्मों के। तो दोस्तों अगर आपको 90s और 2000s के देवी धवन वाले फुल ऑन मसाला एंटरटेनर्स याद है, जहां कन्फ्यूजन, कॉमेडी रोमांस और फैमिली ड्रामा का जबरदस्त तड़का होता था, तो हे जवानी तो इश्क होना है बिल्कुल वही नॉस्टैल्जिया लेकर आई है। यह फिल्म बेहतरीन डायरेक्टर डेविड धवन की आखिरी डायरेक्टोरियल वेंचर मानी जा रही है, इसलिए फैंस के लिए यह फिल्म और भी खास बन गई है। यह फिल्म रिलीज हुई थी 5 जून को और इस फिल्म में लीड रोल्स में नजर आ रहे हैं वरुण धवन एस जस, मृणाल ठाकुर एस वानी और पूजा हेगड़े एस प्रीत। साथ ही फिल्म में मनीष पॉल, जॉनी लेबर, राजपाल यादव, जिमी शेरगिल और चंकी पांडे भी नजर आ रहे हैं। कहानी जस और बानी की शादीशुदा जिंदगी के आसपास घूमती है। दोनों के बीच फैमिली प्लानिंग और करियर को लेकर मतभेद बढ़ते लगते हैं। इसी बीच एक नया रोमांटिक एंगल और कई कॉमिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहानी में ट्विस्ट लेकर आती है। फिल्म में डेविड धवन के ट्रेडमार्क एलिमेंट्स, डबल मीनिंग्स के बिना क्लीन कॉमेडी, मिस्टेकन आइडेंटिटीज, फैमिली इमोशंस और कलरफुल सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं। और अगर आपको पार्टनर, मुझसे शादी करोगे और मैं तेरा हीरो जैसा फिल्म्स पसंद आई थी, तो इस फिल्म में भी वही लाउड कॉमेडी, लार्जर देन लाइफ सिचुएशंस और एंटरटेनिंग सपोर्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं। फिल्म के रिमेक सॉन्ग चुनरी चुनरी लेट्स गो भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और क्रिटिक्स और ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिक्सड रहा है। काफी लोगों ने फिल्म को पैसा वसूल फैमिली एंटरटेनर बताया, जबकि कुछ व्यूवर्स को लगा कि फिल्म थोड़ी लंबी है और स्क्रीन प्ले और टाइट हो सकता था, लेकिन वरुण धवन की कॉमिक टाइमिंग और डेविड धवन नॉस्टैल्जिया फैक्टर को ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर लगभग 11 करोड़ की शानदार शुरुआत की थी और वीकेंड में अच्छा परफॉर्म किया। छठे दिन तक फिल्म भारत में 40 करोड़ के आसपास पहुंच रही थी, जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 50 करोड़ के करीब पहुंच गया है। मिक्स्ड रिव्यूज के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट होल्ड बना रखा है।

दोस्तों अगला फिल्म है बंदर। बॉलीवुड में हर साल कई फिल्में आती है, लेकिन कुछ फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि डिस्कशन का टॉपिक बन जाती है। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही फिल्म की जिसका नाम सुनते ही क्यूरियोसिटी जाग जाती है, बंदर। नाम सिंपल है लेकिन कहानी और प्रेजेंटेशन काफी हद के है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एक्लेम्ड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने, जो हमेशा अपनी बोल्ड स्टोरी टेलिंग और रियलिस्टिक सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी वो एक ऐसी दुनिया लेकर आई है जो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछती है और ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर देती है। फिल्म की कहानी एक यंग मैन के आसपास घूमती है जो सिस्टम, सोसाइटी और अपनी पहचान के बीच उलझा हुआ है। बंदर सिर्फ एक टाइटल नहीं बल्कि एक मेटाफोर है, एक ऐसे सोसाइटी का मेटाफोर जो कभी कभी बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन जाती है। फिल्म सोशल सटायर, डार्क ह्यूमर और इंटेंस ड्रामा का इंटरेस्टिंग मिक्स है। कहानी धीरे धीरे लेयर्स खोलती है और हर सीन के साथ ऑडियंस को एक नया पर्सपेक्टिव देती है। फिल्म में टैलेंटेड एक्ट्रेस की एक स्ट्रॉन्ग एसेंबल कास्ट नजर आ रही है। हर कैरेक्टर कहानी को आगे बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं और परफॉर्मेंसेस को क्रिटिक्स ने काफी सराहा है। ये टिपिकल पॉपकॉर्न एंटरटेनर नहीं है, ना ही ये लार्जर देन लाइफ हीरोज है और ना ही ओवर द टॉप एक्शन है। इसकी स्ट्रेंथ इसका रो रियलिज्म, पावरफुल डायलॉग्स और ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले है। अनुराग कश्यप का सिग्नेचर स्टाइल हर फ्रेम में दिखता है, डार्क, कृति और बिल्कुल अनअपोलोजेटिक। क्रिटिक्स ने फिल्म की राइटिंग और डायरेक्शन को काफी अप्रिशिएट किया है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर डिस्कशंस काफी गर्म है। कई व्यूवर्स इसे साल की सबसे थॉट प्रोवोकिंग फिल्म्स में से एक बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को इसका डार्क टोन और स्लो बर्न नैरेटिव थोड़ा चैलेंजिंग लगा। लेकिन एक बात पर सब सहमत नजर आ रहे हैं कि बंदर एक ऐसी फिल्म है जो थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी आपके दिमाग में काफी देर तक रहती है। फिल्म ने मल्टीप्लेक्स सर्किट्स और अर्बन सेंटर्स में अपनी ओपनिंग ली। वर्ड ऑफ माउथ भी काफी स्ट्रांग रहा, जिसकी वजह से कलेक्शंस में स्टेबिलिटी देखने को मिली। ये उन फिल्मों में से है जो धीरे धीरे ऑडियंस बनाती है और डिस्कशन के दम पर लंबी रेस दौड़ती है। दोस्तों मैं आगे आपको आने वाले दिनों में रिलीज होने जा रही कुछ फिल्मों की जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं फिल्म मेकअप सबका सबसे पहला गीत वेलकम टू द जंगल का, ऊंचा लंबा कद फॉर एवर, जिसे गाया है आनंद राज आनंद और रुबाई ने।

आइए अब नजर डालते हैं अपकमिंग मूवीज पर। तो दोस्तों, थिएटर्स में कई बड़ी फिल्में दस्तक देने वाली है और सिनी लवर्स की वॉच लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। रोमांस, इमोशंस, नॉस्टैल्जिया और ड्रामा से भरपूर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिनके लिए ऑडियंस में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। तो नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ मच अवेटेड अपकमिंग फिल्मों पर। दोस्तों, अगर आपको सोलफुल लव स्टोरीज पसंद है तो डायरेक्टर इम्तियाज अली एक बार फिर अपने सिग्नेचर स्टाइल के साथ आ रही है मैं वापस आऊंगा फिल्म लेकर। फिल्म की रिलीज डेट 12 जून को रखी गई है, यानी ये फिल्म कल रिलीज होने वाली है। फिल्म में दिलजीत दोसांझ, सरबरी, वेदांग रायना और नसीरुद्दीन शाह नजर आएंगे। कहानी 1947 के पार्टीशन के बैकड्रॉप में सेट एक इमोशनल लव स्टोरी है जहां प्यार, जुदाई और यादें एक साथ सफर करती है। फिल्म का म्यूजिक एआर रहमान ने दिया है और टीजर के बाद से ही म्यूजिक लवर्स में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। अर्ली स्क्रीनिंग्स के बाद इंडस्ट्री इंसाइडर्स ने फिल्म को इमोशनल और इम्पैक्टफुल बताया है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि यादों और अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की भी बात करती है। अब बात करते हैं गवर्नर फिल्म की। दोस्तों, इस फिल्म को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। मेकर्स धीरे धीरे डिटेल्स रिवील कर रहे हैं और इसी वजह से ऑडियंस की क्यूरियोसिटी भी और बढ़ गई है। पॉलिटिकल ड्रामा और पावर डायनेमिक्स के बैकड्रॉप पर बनी इस फिल्म से काफी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई है। फिलहाल मेकर्स स्टोरी और कैरेक्टर्स को लेकर ज्यादा खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री सर्कल्स में इस प्रोजेक्ट को एक सीरियस कंटेंट ड्रिवन फिल्म माना जा रहा है। कभी कभी फिल्म का सस्पेंस उसके ट्रेलर से नहीं, उसकी सीक्रेसी से बनती है और गवर्नर फिलहाल वही कर रही है। और अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही नॉस्टैल्जिया की वेव आ जाती है। जहां दोस्तों, बात करी हो कॉकटेल 2 की जो 19 जून को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं होमी अडानिया, जिन्होंने ओरिजिनल कॉकटेल भी डायरेक्ट की थी। इस बार लीड कास्ट में है शाहिद कपूर, कृति सनन और रश्मिका मंदाना। ये ओरिजिनल फिल्म की डायरेक्ट सीक्वल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल सक्सेसर बताई जा रही है। रोमांस, फ्रेंडशिप, हार्टब्रेक और मॉडर्न रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक अलग स्टाइल में दिखाने वाली है। फिल्म का म्यूजिक प्रीतम ने कंपोज किया है, जो प्रमोशनल सॉन्ग्स पहले भी सोशल मीडिया पर बज क्रिएट कर चुकी है। सोशल मीडिया पर ऑडियंस काफी एक्साइटेड नजर आ रही है और स्पेशली शाहिद, कृति, रश्मिका की पेयरिंग को लेकर डिस्कशंस बनी हुई है। दोस्ती, प्यार और इमोशंस का नया कॉकटेल देखना होगा कि क्या ये फिल्म ओरिजिनल कॉकटेल वाली मैजिक फिर से क्रिएट कर पाती है या नहीं।

तो दोस्तों, जून का महीना सिनेमा लवर्स के लिए काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाला है। एक तरफ इम्तियाज़ अली की इमोशनल लव स्टोरी है मैं वापस आऊँगा, दूसरी तरफ मिस्ट्री से घिरी गवर्नर, और तीसरी तरफ ग्लैमर और रोमांस से भरपूर कॉकटेल 2। इनमें से आप सबसे ज़्यादा किस फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल म्यूज़िक का मज़ा लीजिए, क्योंकि दोस्तों पिक्चर अभी और बाकी है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी OTT अपडेट्स लेकिन इस गीत के बाद। आप सुनने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र फिल्म का बंधन चली सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

जहां दोस्तों आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप। तो आइए अब नजर डालते हैं कि इस वक्त ओटीटी में कौन सी फिल्म ट्रेंडिंग पर चल रही है। तो दोस्तों, अगर आपको डार्क कॉमेडी के साथ एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड स्टोरी देखना पसंद है तो माँ बहन आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। फिल्म में नजर आ रही है माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और धारणा दुर्गा। कहानी एक माँ और उसकी दो बेटियों के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी एक अनएक्सपेक्टेड क्राइम के बाद उलट पुलट हो जाती है। फिल्म का फेमिनिस्ट एंगल काफी डिस्कस हो रही है, क्योंकि ये वीमेन की फ्रीडम, आइडेंटिटी और सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स को ह्यूमर और ड्रामा के साथ एक्सप्लोर करती है। ऑडियंस और क्रिटिक्स ने लीड एक्ट्रेसेस के परफॉर्मेंसेस को काफी पसंद किया है। और साथ ही दोस्तों, मिडिल क्लास इंडिया की सबसे प्यारी फैमिली फिर से लौट आई है गुल्लक सीजन 5। इसमें मिश्रा परिवार के रोजमर्रा के स्ट्रगल्स, छोटी छोटी खुशियां और इमोशनल मोमेंट्स एक बार फिर दिल जीत रही है। जमीत खान और गीतांजलि कुलकर्णी के साथ इस सीजन में अनु के रोल में आनंद वी जोशी नजर आ रहे हैं। फैंस को शो का वही रिलेटेबल और नॉस्टैल्जिक फ्लेवर पसंद आ रही है, हालांकि कास्टिंग चेंज को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस भी देखने को मिल रही है।

और साथ ही दोस्तों, अगर आपको इंस्पिरेशनल कंटेंट के पसंद है तो मेड इन इंडिया ए टाइटन स्टोरी भी काफी बज में है इस वक्त। ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल सीरीज भारत के आइकॉनिक वॉच ब्रांड टाइटन के सफर को दिखाती है, कैसे एक इंडियन ब्रांड ने इनोवेशन, डिजाइन और ट्रस्ट के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और मेड इन इंडिया सक्सेस स्टोरीज में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए ये एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। अगर आपको पाताल लोक, खोरा या इंटेंस इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर्स पसंद है तो इस हफ्ते आपके लिए आ रही है राख सीरीज में लीड रोल्स में है अली फजल, सोनाली बेंद्रे और आमिर बसीर। ये सीरीज 12 जून यानी कल से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। कहानी शुरू होती है दो टीनेजर्स के अचानक गायब हो जाने से। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने निकलते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो केस की गहराइयों में जाता है वैसे वैसे उसके सामने इंसानी सोच के कुछ बहुत ही अंधेरे और डिस्टर्बिंग पहलू खुलने लगते हैं। ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस नहीं बल्कि क्राइम, ग्रीफ और साइकोलॉजिकल डार्कनेस की कहानी है। सीरीज का ट्रेलर काफी सस्पेंस क्रिएट कर रही है, स्पेशली सोनाली बेंद्रे के इंटेंस अवतार की काफी तारीफ हो रही है। फैंस अली फजल को एक सीरियस इन्वेस्टिगेटिव रोल में देखने के लिए भी काफी एक्साइटेड हैं।

दोस्तों आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप। तो आइए हम नजर डालते हैं बॉलीवुड के सबसे ट्रेंडिंग न्यूज पर। तो प्रणीत मौर्य पिछले कुछ दिनों से उनके शो में हुए 370 रुपये बिरयानी वाले स्टेटमेंट को लेकर काफी नेगेटिव झेल रहे हैं। जिस शख्स ने वो स्टेटमेंट दिया था उसने सोशल मीडिया पर माफी मांगकर अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया था। वहीं प्रणीत ने भी माफी मांगी थी, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ और अब इस बीच प्रणीत ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रणीत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। दरअसल प्रणीत के खिलाफ कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स खड़े हुए, जिसमें कुशा कफीला से लेकर एल्विस यादव तक नजर आए। कई महिलाओं ने प्रणीत की क्लास लगाई कि कैसे वो ऐसे कमेंट को दिखा सकते हैं और उस पर मजाक बना सकते हैं। सपना चौधरी, जो हरियाणा की पॉपुलर सिंगर और एक्ट्रेस है, सपना फिलहाल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई है। सपना ने अपने पति वीर साहू के खिलाफ घरेलू हिंसा और आरोप लगाया है। इसके बाद नई दिल्ली द्वारका महिला अदालत ने उन्हें घरेलू हिंसा में महिलाओं के प्रोटेक्शन के तहत अंतरिम राहत दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने 24 जनवरी 2020 में शादी की थी और दोनों के दो बेटे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक सपना को उनकी अपकमिंग फिल्म मोमाको के प्रीमियर से पहले अंतरिम राहत मिली है, जो 10 जून को बताया जा रहा है। यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स अपकमिंग फिल्म अल्फा का टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर में बॉबी डियोल और आलिया भट्ट नजर आते हैं। इस टीजर में आलिया भट्ट दमदार एक्शन करती नजर आ रही है। आलिया भट्ट के फिल्म का टीजर देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं कि शर्वरी कहाँ है, जो इस फिल्म की लीड रोल में से एक है। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में फिल्म की टीजर का मजाक भी उड़ाते नजर आया। भारत भाग्य विधाता 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। इससे पहले कंगना अलग अलग जगहों पर स्पेशल स्क्रीनिंग रख रही है। पिछले दिनों दिल्ली में उनकी इस फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता भी पहुंचे। रेखा गुप्ता ने इस फिल्म के रिलीज से पहले ही इसे टैक्स फ्री घोषित कर दिया है, जिसे लेकर

तो दोस्तों आज के बॉलीवुड की दुनिया से इतना ही। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये जवानी है दीवानी फिल्म का घाघरा सॉन्ग।

0: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
2: अब भी वक्त है निकल लो भाई लोग, नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा।
1: ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या?
2: अच्छा चल इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या?
1: बरखुदार, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए?

मुखड़ा हर फिल्म में सेम है, पर अंतरों में हर गीतकार ने अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल किया है। तो वही गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ, आप इस गीत का आनंद उठाइए। और नीतू को इजाजत दीजिए, मैं आपसे मिलती हूँ

0: दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है। प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया। एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत तेजी से खेलों का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री को देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक शक्तिशाली और महान नेता है। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है, जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर केंद्र शासित प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की सराहना करते हुए दक्षिण कश्मीर के लोगों की सुविधा के लिए अनंतनाग में इसका ठहराव देने का अनुरोध किया। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कारों की घोषणा की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में और हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आंधी और गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. This Governing Council meeting will bring together chief ministers and lieutenant governors to discuss the Inclusive Human Development Framework. Prime Minister Narendra Modi says aspirations of 140

0: दोस्तों सुबह के 10:10 हो चुके हैं, अब आप सुन पाएंगे आपको पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से

0: और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
1: नमस्कार प्यारे श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे स्वस्थ और खुश होंगे। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में, एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ आप गाने चुनते हैं और उन्हें हम आप तक और आपके अपनों तक पहुँचा देते हैं। आपके मैसेजेस, आपकी फरमाइश और आपके फेवरेट सॉन्ग्स के साथ चलिए शुरू करते हैं ये खास सेगमेंट रेडियो ऑन डिमांड। और आज आपके साथ इस सफर में हूँ आपकी रेडियो साथी आरजे दुनिया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम के पहले फरमाइश के साथ। पहला फरमाइश हमें आया है लंखंगसम कार्बी आंगलोंग असम से टेरन क्रो और उनके परिवार से। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है हमें सिलसिला फिल्म का देखा एक ख्वाब तो, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। तो टेंशन क्रो और आप उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनते हैं आपका पसंद का ये गाना।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

दोस्तों टेंशन टेरन क्रो और उनके परिवार के खूबसूरत रिक्वेस्टेड सॉन्ग के बाद अब अगला रिक्वेस्ट हमें आया है जुमकर बागरा और गतो ओरिजी का। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है गाइड फिल्म का सैया बेनाम लता मंगेशकर की आवाज में, और साथ ही इस गाने को उन्होंने डेडिकेट किया है घुमे माई बागरा जी को। और साथ ही उन्होंने घुमे माई बागरा जी से रिक्वेस्ट करी है कि इस गाने को आप अपने फेसबुक पेज पर स्वयं गाना गाएं। तो गुमे जी, उम्मीद करती हूँ आप इस गाने को जुमकर जी और गतौरी जी को अपने फेसबुक पेज पर जरूर सुनाएंगे। तो चलिए आप सबके रिक्वेस्ट पर ये सुनते हैं गाना सैया बेनाम लता मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। चलिए बढ़ते हैं रेडियो ऑन डिमांड की अगली फरमाइश की ओर, जो हमें आया है गुमे माई बागरा जी से। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है दोस्ती फिल्म का गुड़िया हमसे रोती रहोगे, लता मंगेशकर की आवाज में। तो चलिए गुमे जी, आपका पसंदीदा गीत सुनते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों रेडियो डिमांड पर अगला मैसेज हमें आया है गोलाघाट आसाम से रोमेश पात्रो, रोनू पात्रो और लकी जी का। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का रोते हुए आते हैं सब, और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने, और साथ ही इस गाने को उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को डेडिकेट किया है। दोस्त के नाम है अमोल, बिमोल, बाइकॉम, जोगिंद्र, सोनाली, अंजलि और हितेंद्र। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्त हमें इस वक्त सुन रहे होंगे, तो चलिए आप सबके पसंदीदा गीत सुनते हैं रोते हुए आते हैं सब।

जहां दोस्तों बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। बढ़ते हैं अगली रिक्वेस्ट की ओर, जो हमें आया है हेलम आसाम से ज्योति सोरेन जी का। ज्योति जी, आपको भी बहुत गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आपकी सुबह बहुत अच्छी बीत रही होगी। अब आपकी रिक्वेस्ट पर सुनते हैं तेरे नाल लव हो गया फिल्म का पिया और पिया, जिसे गाया है अतीफ असलम और श्रेया घोषाल ने।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहाँ होती है दिल से दिल के बात। दोस्तों लेते एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम लौटेंगे हमारी रेडियो डिमांड की अगली फरमाइश के साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार।

दोस्तों रेडियो ऑन डिमांड पर अगला गाना आप सुन पाएंगे परोसन फिल्म का मैं चली मैं चली। इस गीत की रिक्वेस्ट हमें आई है सरिहा जान कार्बी अंगलोंग आसाम से, लिसनर से जोगिंद्र रोंगपी, सोनाली इंटीपी और धर्मक्री रोंगपी जी ने। और साथ ही बता दूं इस गीत को गाया है बॉलीवुड की लेजेंडरी सिस्टर्स ने, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने।

दोस्तों बढ़ते हैं रेडियो डिमांड पर अगली फरमाइश की ओर, जो हमें आया है हितेंद्र दास, जो रहने वाले हैं आसाम के, और उन्होंने आज लिखा है कि उन्हें आज कोई भी सॉन्ग प्ले कर दीजिए। तो हितेंद्र दास जी, आज ये गाना हम आपके लिए डेडिकेट करते हैं। हम आपको सुनवा रहे हैं कोई आपसा फिल्म का तेरे दिल का रिश्ता, जिसे गाया है सोनू निगम ने।

तो हितेंद्र दास जी, उम्मीद करती हूँ हमारी ओर से डेडिकेटेड ये गाना आपको पसंद आए होंगे। कल आप अपने पसंद के गाना हमें जरूर भेजिएगा। और दोस्तों, आप सबके पसंदीदा गीत सुनते हुए पता ही नहीं चला वक्त कैसे निकल गया और हम आज के रेडियो डिमांड कार्यक्रम के अंतिम रिक्वेस्ट पर पहुंच चुके हैं। आज का रेडियो डिमांड कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन पाएंगे, गंगा किनारे मारो गांव हो फिल्म का टाइटल ट्रैक, जिसे गाया है उषा मंगेशकर ने। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गोपुर असम से सानू प्रधान जी ने।

दोस्तों, इस गाने के साथ ही आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। हम कल फिर हाजिर होंगे आपके पसंदीदा गीतों के साथ सुबह के 10:10 पर रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में। दोस्तों, बता दूं, आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी 11 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। और साथ ही बता दूं दोस्तों, इसी के साथ ही हम आज के पहली प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। आज के पहली प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक दीतांग जंग तथा तकनीकी अभियंता होलीराम वर्मा। जाते जाते बता दूं दोस्तों, इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा में। और दूसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाएंगे आपका अपना आरजे ननाज। तो अब मुझे यानी आपके रेडियो साथी आरजे दुनिया को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में

0: 7.7% की विकास दर हासिल की है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही है बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बधाई दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को और अधिक गतिशील तथा बेहतर रूप देंगे। उन्होंने बुल्गारिया के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि भारत और बुल्गारिया द्विपक्षीय सहयोग, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी और वैश्विक स्थिरता तथा प्रगति के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ईरान की मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, बेनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आज जयंती है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और गृहमंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि बिस्मिल ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। श्री शाह ने कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी ट्रेन कांड के माध्यम से ब्रिटिश राज की नींव हिला दी थी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब, उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi is chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. The meeting will deliberate on measures to promote entrepreneurship, enhance skilling and create sustainable employment opportunities across the country. Discussions will also focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers including governance, digital public infrastructure and partnerships while ensuring accountability and measurable impact. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Prime Minister Modi today said that farmers' welfare is among the government's top priorities and it is leaving no stone unturned to make their lives as easy as possible. In a series of social media posts, Mr. Modi said, "Farmers are the bedrock of the country's food security, nutrition and prosperity." The Prime Minister highlighted that initiatives such as the PM Kisan Samman Nidhi and the Crop Insurance Scheme are not only safeguarding farmers' incomes but also further strengthening the agriculture sector. Prime Minister Modi has said aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. In his address, Mr. Modi said, "For the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace."
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में

जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गुड मॉर्निंग ईटानगर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सबसे वाइब्रेंट और एनर्जेटिक स्टेशन पर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। उम्मीद है आप सबकी सुबह एकदम कड़क चाय की तरह बेहतरीन होगी, और हो भी क्यों ना। जब पिछले शो में हमारी प्यारी आरजे दुनिया ने अपनी गजब की एनर्जी और ब्यूटीफुल बातों से आपका दिन रौनकदार बना दिया हो। ए बिग लव टू दुनिया पोस्ट सेटिंग द परफेक्ट वाइब। लेकिन हमारे स्टूडियो के घड़ी में बज चुके हैं अब 11:11, और सफर होने वाला है और भी ज्यादा मजेदार, क्योंकि अब से शुरू होगा मेरा सिलसिला, यानी आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास का। जी हाँ दोस्तों, लेकर आ गया हूँ सुपरहिट गाने, देर सारी गुफ्तगु और देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें आप सबके लिए, जो आपका दिन को बना देगा बिल्कुल सॉलिड। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और वॉल्यूम को थोड़ा अप कीजिए, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ने वाले हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात।

और श्रोता दोस्तों, इस सभा को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आज के इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर एते और तकनीकी अभियंता के नंद कुमार। तो चलिए दोस्तों, सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम फिल्मी लहर के साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

ये जो दोस्तों पेश है अगला गीत डांस पे चांस फ्रॉम द फिल्म रब ने बना दी जोरी, जिसे गाया है सुनिधि चौहान और लव झांझुआ ने। इंजॉय कीजिए ये सॉन्ग, मैं लौट कर आता हूँ। सुनते रहिए अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहाँ होती है दिल से दिल की बात।

0: दैट इज ऑल फॉर टुडे।
1: तो दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है हमारे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडीज। अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
3: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण

सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है, जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान के वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशमदीप, मेनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, प्यार की कोई जुबान नहीं होती, ये तो बस एहसास है। जो दिलों को छू जाए वही संगीत सबसे खास है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिसनर्स। आप देख रहे हैं और नहीं, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट स्टेशन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, आपका अपना फेवरेट शो जहां बाउंड्रीज मिट गई और सिर्फ म्यूजिक की जुबा चलेगी। आप सबका स्वागत है एक ऐसे सफर में जहां हम बॉलीवुड के दायरे से थोड़ा बाहर निकलेंगे। आज का वाइब है एकदम चिल, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक और बहुत ज्यादा मैजिकल, क्योंकि हम लेकर आए हैं नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। चाहे वो साउथ का कोई ग्रूवी ट्रैक हो, पंजाबी दादर्शन हो, बंगाली की मिठास हो या फिर मराठी का जोश। म्यूजिक जब सोल को टच करता है तो लिरिक्स समझ आए ना आए दिल जरूर झूम उठता है। तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में एक मराठी गाना। जी हाँ दोस्तों, ये गाना काफी हिट हुआ था और इस गाने को गाया है संजू राठौर ने। लीजिए पैसे ये बेहतरीन गाना। सेकी ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

चलिए दोस्तों, सुनाते हैं हम आपको अगला गीत श्रेया फुकन की आवाज में। एक गीत, ये एसएमएस फिल्म का एक बेहतरीन गीत है, और अगर आपने इस गीत को बचपन में सुना है तो आई एम श्योर कि आपको भी अपना बचपन जरूर याद आएगा। इस गीत का नाम है किनो जादू। ओनली 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होते हैं दिल से दिल की बात।

ये दोस्तों सुनते हैं अगर गीत फ्रॉम द फिल्म लोकल कंग फू 2 जिसे गाया है उत्कल हाजुवारी ने। जी हाँ दोस्तों, ये है एक SMS सॉन्ग जिसका नाम है की बोरोखा।

और श्रोता दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, अब आप सुनेंगे

वतन की मिट्टी से जिनका रिश्ता सबसे गहरा है, हम चैन से सोए क्योंकि सरहद पर उनका पहरा है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बेहद खास और दिल के सबसे करीब शो में। यह है आपका अपना गीत माला, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना होस्ट RJ ननास। दोस्तों, आज का वाइब एकदम जोश से भरा, थोड़ा सा जज्बाती और देर सारी प्राउड फीलिंग्स वाला है। ये शो हम डेडिकेट करते हैं हमारे देश के उन वीर जवानों को, उन फौजी भाइयों को जो हर मौसम हर मुश्किल में सरहद पर तैनात है, ताकि हम अपने घर में मुस्कुरा सके। आप सभी को हमारा सल्यूट। आज की इस गीतमाला में हम लेकर आए हैं आपकी पसंद की वो संगीत जो आपको आपके घर की याद दिला देगा, आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल ला देगा और आपके जोश को हाई से और ज्यादा हाई कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में पहला गीत फ्रॉम द फिल्म बाग मिल्खा बाग।

लीजिए दोस्तों, फिर से ये बेहतरीन गीत फ्रॉम द फिल्म ट्यूबलाइट. इस गीत का नाम है नाच मेरी जा. ओनली ऑन अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़. यहाँ होती है दिल से दिल की बात.

0: नहीं
1: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
0: हाँ पार्टनर, यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूदा मत तो मैं मर जाऊंगा।
2: साले डर गया, क्यों बुलाई?
1: साले इतना सारे, तू कूद गया।
2: अबे पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
1: क्यों
2: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
1: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति। अब तू भी खुद मेरे साथ।

0: और श्रोता दोस्तों, इसी खूबसूरत गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम गीतमाला। आई होप कि इस कार्यक्रम में बजे सारे गीत आप सब ने काफी ज्यादा एंजॉय किए। तो चलिए, अभी अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा

0: missile strike. In a social media post, Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, said the bodies of three seafarers have been located and identified. Trinamool Congress MP Prakash Chigwaraik has resigned as a member of the Rajya Sabha. He has sent his resignation letter to Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan. Earlier, Trinamool Congress leaders and Rajya Sabha members Shukhendu Shekhar Rai and Sushmita Dev had resigned from both the Rajya Sabha and the party. The United States carried out a new round of military strikes on Iranian targets, prompting Tehran to announce the closure of the strategically vital Strait of Hormuz and launch retaliatory actions against regional locations hosting U.S. forces. U.S. Central Command said it had completed a second consecutive day of self-defense strikes targeting Iranian air defense systems, radar installations, communications infrastructure, and surveillance capabilities in response to what Washington called continued Iranian aggression. Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. In the opening match, hosts Mexico will take on South Africa in a Group A clash. The match begins at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And with that, we end this news bulletin.
1: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे। चलिए दोस्तों, अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश।
3: हेलो फरमाइश। हाँ जी नमस्कार। हेलो फरमाइश
4: जी। हेलो फरमाइश में हमारा स्वागत है और आपका भी स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी हम स्वागत करते हैं
4: जी। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप
3: जी? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हो?
4: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है
3: जी। हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए जी।
4: और
3: जी,
4: अभी आपको बताऊँ, हमारे पास गायक सुमन कल्याणपुरी अभी नहीं रहे हमारे बीच में
3: जी। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं।
4: बहुत ही अच्छे अच्छे गाने गाए उन्होंने
3: जी। जी जी, भगवान से हम यही प्रार्थना करते कि उनकी आत्मा को शांति मिले
4: जी। बिल्कुल
3: जी जी जी। हाँ जी,
4: तो मैं आपको बताऊं उन्हीं की गाया हुआ है गाना सुनना चाहूंगा।
3: हाँ जी, पहले तो अपना परिचय हो जाए
4: जी। सर मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा
3: हूँ। ओके प्रेम सिंह सिसोदिया जी, सबसे पहले तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहिए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं सुमन कल्याणपुर जी की?
4: जी सर, फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी और गाने के बोल रहेंगे आजकल तेरे मेरे प्यार के चलते।
3: ओके
4: जी हाँ।
3: और किन लोगों को डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
4: जी जैसे कि हमारा एक ग्रुप बना हुआ हेलो फरमाइश रेडियो एक्स्ट्रा ग्रुप, उनके सभी श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। उसमें से खासकर हमारे दोस्त है लोकेंद्र वर्मा, तुकाराम जाधव, आशुतोष अविनाश, संगीता जी, गौतम राय बोले सर, और आकाशवाणी दीप्ति जोशी लखनऊ के, और ऐसे बहुत सारे दोस्त है ना जो हमसे लगातार जुड़ते रहते हैं, उन सभी के लिए डेडिकेट रहेगा। श्रीपाल गोयल और योगेश जांगड़े जी के लिए।
3: जी जी जी, प्रेम सिंह जी तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान सिंह जी, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में।
1: जी सर, आप भी अच्छे हैं सर? मैं भी अच्छा हूँ, ड्यूटी परेड में हूँ सर। कल हमारे यहाँ खूब पानी आया सर, और आंधी तूफान भी आया है कल।
0: अच्छा जी,
1: ये उलट पुलट मौसम हो रहा है। आज मैं वही जंगली नर्सरी के बीच में खड़ा हूँ सर, तो ठंडा ठंडा हवा चल रहा है
0: ओके।
1: धूप में जाने से थोड़ा धूप लगता है, और लेकिन हवा अच्छा चल रहा है।
0: अच्छा, कल आंधी तूफान थी और अभी धूप खिल रही है।
1: जी सर, और
0: ओके ओके,
1: हवा भी ठंडा ठंडा चल रहा है।
0: क्या बात है। जी जी बहुत ही बढ़िया मौसम है।
1: जी सर,
0: जी जी तो बढ़िया मौसम में कौन सा बढ़िया गीत सुनाए आपको?
1: आज सुनाएंगे सर, फिल्म का नाम है लाल बादशाह, और गाने का बोल है कोई दिल देने वाला है कोई दिल लेने वाला।
0: ओके
1: गायिका आशा भोसले, सूरज भोसले गायक है, और अमिताभ बच्चन, मनीषा कोइराला जी का फिल्म का गाना है। और सबसे पहले गीत आपको केंद्र निर्देशक साहब को, पूर्व भारत राष्ट्र श्रोता को, आकाशवाणी ईटानगर में जुड़े सभी उद्घोषक भाई बहनों को, हेलो एकता रेडियो फरमाइश ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को, पूरे भारत राष्ट्र श्रोताओं को ढेर का सर।
0: तो इंद्रभान सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी सर, फोन कर लीजिए सर।
0: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश,
1: हेलो,
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश,
1: नमस्कार नमस्कार। नहीं आसाम से बात कर रहा हूँ, सुतपा बट्टचरिया।
0: सुतपा जी, कैसे हैं आप?
1: मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? जी
0: जी मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। आप भी हमेशा अच्छा रहिए, बढ़िया रहिए
1: जी जी
0: जी। हाँ जी,
1: आज पर मैं गाना सुना दीजिए। ये फिल्म का नाम तो पता नहीं, गाने का बोल है
0: हाँ जी, बोलिए। गाने का बोल।
1: मुंबई में आया मेरा दोस्त।
0: ओ जी, जरूर सुनाएंगे, बढ़िया गाना है। और किन लोगों को
1: जी,
0: आप सुनाना चाहेंगे?
1: पहले तो आपके लिए सपना
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: चाहिए, सिंधु दास, सबजीत दास, प्रमोदी चक्रवर्ती, नितिन चक्रवर्ती, ओम नुपमा भट्टाचार्य, ओम प्रकाश सिनेमा, विजय सिंह लकड़ा, सतीश भाई,
0: ओके
1: श्रीकांत जोशी, सबके
0: जी, इन सभी को आप
1: लिए।
0: सुनाना चाहते हैं ना? तो सुतपा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको अपने पसंद के गाना सुनाते हैं।

0: करो।
1: हेलो फरमाइश।
2: हाँ भैया नमस्ते जी, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी योगेश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए कैसे हो आप?
2: बढ़िया है भैया, अच्छे हैं।
1: ओके, और आकाशवाणी ईटानगर में ये कितने नंबर का कॉल है?
2: ईटानगर में लगभग लगभग भैया ये लगभग 75 से 80 के बीच में है।
1: बाप, और काफी प्रोग्राम सुनते हैं आप आकाशवाणी ईटानगर?
2: हाँ जी, सुनने को तो बहुत सुनते हैं, लेकिन फोन इन्हें सबसे ज्यादा
1: अच्छा अच्छा लगता है,
2: पसंद है।
1: ओके, तो कहिए आज फोन इन कार्यक्रम में कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं?
2: फिल्म सिलसिला से सुनवा देंगे, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए।
1: ओके जी, और किन लोगों को डेडिकेट करना चाहेंगे?
2: हेलो फरमाइश एकता ग्रुप के सभी साथियों को।
1: ओके, सभी को आप सुनाना चाहते हैं
2: जी?
1: ओके, तो योगेश जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं सिलसिला फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो हेलो फरमाश
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश
1: अंकुर,
0: ईटानगर जी।
1: नमस्कार, सत श्री अकाल, और आकाशवाणी ईटानगर के सब दीवाने और दीवानियों को, यानी कि अनूप कुमार भट्टाचार्य का सब प्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राधे
0: नमस्ते
1: राधे, है
0: जी,
1: ना?
0: राधे राधे। नमस्कार अनूप दा को भी, आकाशवाणी ईटानगर की
1: जी,
0: ओर से
1: कुछ
0: जी।
1: रिश्तों को मुलाकात की जरूरत नहीं पड़ती, याद करते ही चेहरे पर खुशी छा जाती है
0: खुशी
1: ना?
0: छा जाती है, क्या बात है जी
1: वहां के क्लाइमेटिक नजारा क्या है, कैसे है, बोलिए
0: जी
1: थोड़ा।
0: अनुपदा। अभी धूप नहीं है, बादल छाया हुआ है, कल बारिश हुई थी तो अभी
1: जी,
0: जी।
1: एकदम डिट्टो। हमारे कल तो बारिश हुई थी, आज तो बारिश नहीं हुआ,
0: हाँ
1: लेकिन
0: जी,
1: सूरज नहीं है लेकिन बादल छाए हुए हैं।
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: एक तो हमारे दिगंबर गायिका सुमन कल्याणपुर जी के स्वर्गवास हो गए, तो उन्हीं के एक गाए हुए, साथ में मोहम्मद रफी जी है,
0: ओके।
1: और मतलब बहुत अच्छी एक पिक्चर थे, नहीं देखा फिर भी
0: जी
1: ये पिक्चर बहुत लाजवाब है। फर्स्ट
0: ओ
1: फिल्म के गाने हैं, तुमसे वो हसीना कभी मोहब्बत ना मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, ऐसे करके गाने हैं
0: ओके जी।
1: ये मोहम्मद रफी जी, और साथ में सुमन
0: सुमन कल्याणपुर
1: कल्याणपुर
0: जी
1: जी है,
0: जी
1: और कुछ दोस्तों को मैं याद करता
0: जी
1: हूँ
0: जरूर जरूर
1: जी। पहले है हमारे बसंतीलाल सूर्यवंशी जी है, और विजय सिंह लखेरा जी, सतीश भाई, श्रीकांत जोशी जी, और कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी, प्रेम जी चक्रवर्ती जी, बापन आचार्य, सिंधु दास, छोटा भाई देवजीत दास, और ओम प्रकाश नेमा जी, अनवर बिहारी भाई जी, और ढेर सारे श्रोता अभी सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के मन भावन प्रोग्राम सबके लिए, और खास करके हमारे दोस्त बके बागेरा, और हमारे बहुत अच्छे आरजे जो जिसका नाम है नूरी के लिए। और बातचीत को यही पे विराम देता हूँ।
0: जी
1: बहरहाल आप अच्छे
0: अनुपदा
1: रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारे श्रोता भाई बहन अच्छे रहे। थैंक
0: जी,
1: यू
0: हमें भी डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी।
0: थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी, मैं हिजी बागरा से गुम्मे मई बागरा बोल रही हूँ।
0: ओके, गुमने माई बागरा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हो?
1: मैं ठीक हूँ, अभी पानी खेती में खेत काम कर रही हूँ जी।
0: अच्छा, खेत से ही आपने कॉल मिलाया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारा
1: बहुत 7-8 month हो गया, आज
0: ओके
1: दूसरी बार लग रही है
0: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिनों के बाद भी आपने हमें याद किया जी।
1: जी।
0: और मौसम कैसा है वहाँ पे?
1: बहुत धूप दे रही है, छाता
0: अच्छा,
1: लगा के काम
0: ओ
1: कर रही हूँ जी।
0: ओके ओके ओके, तो गर्मी से थोड़ा अपने को बचाइए जी। ओके,
1: अभी ये रेस्ट कर रही हूँ,
0: अच्छा,
1: रेस्ट
0: ओके
1: करके आपको फोन कर रही हूँ
0: जी, बहुत ही अच्छा लगा आपने हमें कॉल मिलाया। तो कहिए,
1: जी।
0: आज इस कार्यक्रम में कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं?
1: ये एक गाइड मूवी का है, एक क्लासिकल सॉन्ग है, ये लता जी का गाना,
0: आप
1: मोसे छल की जाए, हाय हाय हाय, देखो ये गाना
0: ओके, बहुत ही बढ़िया गाना
1: कैया बेईमान, ये गाना
0: जी, जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को आप?
1: ये इसको ना, ये मेरा हस्बैंड और एक है के, इसका यही गाना का इतना वो फेवर करते इस गाने को, गोई
0: अच्छा
1: बाम,
0: अच्छा जी, इन दोनों को
1: ये मेरा
0: आप डेडिकेट करना चाहते हैं जी। तो गुमने माई बागरा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना गाइड फिल्म से सुना रहे हैं।
1: और

0: हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: हेलो फरमाइश आदरणीय वागरा साहब, सादर सा प्रेम प्यार है नमस्कार।
0: प्रेम भरा नमस्कार हमारी ओर से भी आपको।
1: जी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश ऐसी आदरणीय वागरा साहब से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी ईटानगर।
0: जी जी जी बहुत ही धन्यवाद आपने हमें कॉल मिलाया और एक आरजे की ही तरह आपसे गुफ्तगु हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
1: जी जी जी धन्यवाद धन्यवाद, हमें बहुत अच्छा और खुशी प्रसन्नता होती है जब आपसे वार्तालाप होती है।
0: जी अगर आज कैसा है मौसम का मिजाज आपके वहाँ?
1: मौसम का मिजाज ये है कि खुली खुली धूप है, मंद मंद हवाएं चल रही हैं, थोड़ी सी उमस भरी गर्मी बढ़ गई है लेकिन तापमान जो है तो थोड़ा सा 8-10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया है।
0: अच्छा तब तो मौसम पहले से तो बढ़िया है।
1: जी हाँ जी। पहले से बेहतर अपन कह सकते हैं कि मौसम अच्छा है।
0: ओके ओके तो इससे बढ़िया मौसम में कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: 31 मई को हमारे बीच सुमन कल्याणपुरी अब नहीं रहे, वो ब्रह्म विलीन हो गई हैं और भौतिक रूप से हमारे सामने नहीं है लेकिन उनके अपनी आवाज के माध्यम से हमारे दिल दिमाग में सदैव जीवित रहेंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: और मैं उन्हें सत सत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, फिल्म का नाम है कण कण में भगवान। सुमन कल्याणपुर ने गीत को गाया है और गीत के बोल है
0: जी।
1: मैं अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, बहुत ही सुंदर गीत है
0: जी, जी,
1: अपने
0: जी।
1: पिया की बनी रे जोगनिया और फिल्म का नाम कण कण में भगवान। और आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारण हेतु।
0: जी जी जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों को आप डेडिकेट करना चाहेंगे इस गीत को?
1: इस गीत में सर्वप्रथम मैं शामिल करता हूँ आरणी वागरा साहब को, आरणी नूरी जी को और हमारे ब्रज रेडियो श्रोता मित्र हैं सर श्री अविनाश जी, आशुतोष जी, लोकेंद्र वर्मा है, राजू यादव है, पूरन वर्मा है, पुरुषोत्तम जी हैं, पुष्कर नाथ जी हैं, राकेश कुमार जी हैं, इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी ईटानगर के सभी सम्मानित श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी कॉल करने के लिए। तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना कण कण में भगवान फिल्म से।
1: जी हृदय धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते। हेलो
1: मैं जवाहरलाल बर्मन, मैं काछार डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर।
0: जी, कचार डिस्ट्रिक्ट से हमारे नियमित श्रोता जवाहरलाल जी, बहुत बहुत
1: जी
0: स्वागत
1: हाँ
0: है।
1: हाँ थैंक यू सर। तो आप कैसे हैं सर?
0: जी मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हो?
1: मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं तो
0: ओके,
1: इतना ट्राई किया था,
0: अच्छा
1: फोन तो लगता ही नहीं।
0: जी, काफी सारे लोग लाइन पे है ना, इसीलिए
1: जी हाँ जी
0: बिजी
1: हाँ
0: रहता
1: जी
0: है। जी,
1: जी हाँ। तो आज एक सुरीली गाना सुनना चाहता हूँ,
0: जी जरूर।
1: 1964 का वो फिल्म, और राजकुमार फिल्म से, लता जी के सर में वो गाना,
0: ओके,
1: आ जा आइए बाहर दिल ही
0: ओ
1: लेकर आ रोमी।
0: जी, बहुत ही प्यारा गीत है।
1: वो गाना तो मुझे बहुत पसंद है। ये गाना महान गीतकार शैलेंद्र जी ने लिखा है और मधुर सुर से सजाए है महान संगीतकार शंकर जय किशन जी ने।
0: जी,
1: बचपन से गाना मेरा बहुत फेवरेट है। ये गाना सुनता है तो तुम दिल अच्छा हो जाता है,
0: ओके
1: और
0: जी,
1: ये गाना सुनता रहा हूँ मैं बचपन से। लेकिन ये गाना कौन लिखा है, किसने सुर दिया है, मुझे कुछ मालूम नहीं है।
0: अच्छा जी,
1: रेडियो सुन सुनकर जब मैं बढ़ता रहा हूँ तो मैं इन्हें जानने को कोशिश किया, ये गाना कौन लिखा है, इस गाने में मधुर सुर से कौन सजाया है। तो
0: ओके,
1: बहुत जान पहचान हो गया सर, और रेडियो सुन सुनकर तो
0: जी
1: बहुत अच्छा लगता है। और महान गीतकार और महान संगीतकार जी को मैं श्रद्धांजलि मैं अर्पण करता हूँ। तो आज भी ये गाना मुझे सुना दीजिए, आज भी बहुत फेवरेट है ये गाना,
0: जी जरूर।
1: तो ये
0: और
1: गाना मुझे सुना दीजिए
0: हाँ
1: सर।
0: जी, जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों को डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
1: सर ये गाना तो डेडिकेट करना चाहता हूँ सर, पहले आपके
0: धन्यवाद जी।
1: और आशुतोष बाबू ही, भाई प्रमोद जी चक्रवर्ती ही, मेरा चाहता हूँ सुनने वालों सब लिसनर्स के लिए सर।
0: ओके, तो जवाहरलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ सर, थैंक यू।
0: सुनते हो
1: हाँ
0: रात
1: थैंक
0: के
1: यू।
0: मध्यम पर।

0: हेलो फरमाइश।
1: तो दोस्तों, ये तो कार्यक्रम हेलो फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब लेट है एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे हमारे संगीत में सफर में। तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। लेकिन आप ब्रेक के बाद आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार।
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pay Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
4: नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें, ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मॉनसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास ना करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें, ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, वे सतर्क रहे और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न ले। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दे। और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं DEOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371।

0: Nations of world-class talent, from history to high stakes, from legends to new challengers. The stage is set for football's ultimate battle. Shagun Chopra from Sports Desk.
1: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and states key to realising Vikasit Bharat vision, chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. First Made in India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया
3: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है।

0: अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
0: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, मतलब जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाऊ ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
3: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद ड्रोन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था।

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

और श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब शुरू होगा वो शो जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हां दोस्तों, आइए शुरू करते हैं द कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

वो खट्टी मीठी यादें, वो बीते हुए पल, आज फिर लेकर आए हैं वही सुनहरा कल। A very warm welcome to all my lovely listeners. अगर आपको भी लगता है कि असली रोमांस, असली ढिंचक डांस और सच्चा संगीत सिर्फ और सिर्फ ही एक ही दौर में था, तो बॉस आप एकदम सही जगह पर हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और अब शुरू होगा आप सबका सबसे फेवरेट शो द हिट्स ऑफ 90s। दोस्तों, आज का वाइब होने वाला है एकदम नॉस्टैल्जिक, थोड़ा सा क्रेजी और बहुत ही ज्यादा फिल्में। हम बात कर रहे हैं उस जमाने की जब गाने कैसेट्स में सुने जाते थे और जब दिल के जज्बात कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण के गानों से व्यथित होते थे। तो रेडी हो जाइए उस दासू पॉप ट्रैक्स पर झूमने के लिए और उन बेहतरीन राग और मीठी गीतों को खोने के लिए। अपने दोस्तों को कॉल लगाओ, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओ और चलो चलते हैं यादों की उस हसीन गली में। लेट्स हिट द 90s ब्लॉकबस्टर विद द फर्स्ट एब्सोल्यूट जैम फ्रॉम द फिल्म अंदाज, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। दिस सॉन्ग इज आज कहना जरूरी, ओनली ऑन अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: The Maruti Suzuki.
1: चलिए श्रोता दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे कुछ बेहतरीन नगमों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात।
0: द मारुति सुजुकी विक्टोरियस इज फाइनली हियर एंड हैज एवरीथिंग यू कुड इमेजिन इन योर एसयूवी। डॉल्बी एटमोस 5.7 सराउंड साउंड, यस। Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs. 10.49 lakh.
2: And benefits up to Rs. 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
4: Get attractive offers up to Rs. 67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
4: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
1: वेलकम बैक मेरे प्यारे लिसनर्स, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में। एक बार फिर से मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक बेहतरीन गीत फ्रॉम द फिल्म कुली नंबर 1, जो बनी थी 1995 में। जी हाँ दोस्तों, और इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। ये गीत है मैं तो रस्ते पे जा रहा था, तो नाचना नहीं भूलिएगा ये गीत सुनते सुनते। और बने रहिए, सुनते रहिए हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: और श्रोता दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। आई होप कि इस कार्यक्रम में बजे सारे सॉन्ग्स आप सभी ने काफी ज्यादा एंजॉय किए हैं। अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस, मिस मेकमान श्रोताओं का समाचार और उसके तुरंत बाद थाई कामती श्रोताओं का समाचार। हम फिर मिलेंगे हमारे संगीत में सफर में एक बार फिर से।
1: This is Kenyum Ango. Today's headlines are: Prime Minister Narendra Modi chairs the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. Government waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. 22%, 25%, 27% and 30% ethanol blended petrol has been exempted from central excise duty. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for more dynamic and forward-looking India-Bulgaria ties, says India's ties with Bulgaria are long-standing and consistent. Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu expresses happiness over the maiden test flight of the first made-in-India Airbus C-295 from Vadodara in Gujarat. Mr. Naidu says it reflects the country's growing capabilities in aerospace manufacturing. U.S. military launched another round of strikes on multiple targets in Iran yesterday, says the attacks were in response to Iran's continued aggression. As tensions escalated in West Asia, despite efforts to revive negotiations to end the war.

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का। ऑल माय लवली लिसनर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूं सबसे चटपटा, सबसे ताजा तरीन और धमाकेदार शो द बॉलीवुड अपडेट्स।

दोस्तों जून का महीना चल रहा है और गर्मी के साथ साथ हमारा बॉक्स ऑफिस और बी टाउन का तापमान भी एकदम हाई चल रहा है। इस महीने पूरे 1400 करोड़ दाव पर लगे हैं क्योंकि फिल्मों की लाइन लगी हुई है। तो अगर आप भी सिनेमा के दीवाने हैं और जानना चाहते हैं कि आपके फेवरेट स्टार्स की जिंदगी में क्या पक रहा है, तो अगले कुछ पलों के लिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। लेट्स dive straight into the glitz, glamour and gossip.

दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की, जहां इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। पिछले ही हफ्ते रिलीज हुई वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेज की रोम कॉम है जवानी तो इश्क होना है, देवी धवन साहब की ये मूवी उनकी रिटायरमेंट से पहले की आखिरी फिल्म कही जा रही है, पर बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा स्ट्रगल करती दिख रही है ये फिल्म। 6 दिनों में फिल्म ने करीब 35-34 करोड़ का बिजनेस किया है। मंडे के बाद से कलेक्शन थोड़े ठंडे पड़ गए हैं।

लेकिन वही दूसरी तरफ साउथ से आई पैन इंडिया फिल्म पेडी, जहां रामचरण और जानवी कपूर का जलवा है, उसने तो आग लगा दी है दोस्तों। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 235 करोड़ से ज्यादा का दासू बिजनेस कर लिया है और हिंदी बेल्ट्स में भी लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बॉबी देओल की एक्शन थ्रिलर बंदर भी थिएटर्स में हिचकोचले कह रही है, पर बॉबी के फैंस उनके नेगेटिव अवतार को देखकर अभी भी सीटियां बजा रहे हैं।

चलिए अब बात करते हैं उन फिल्मों की जो आने वाले हफ्तों में धूम मचाने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। जून का ये महीना ट्रेड एनालिसिस के लिए एक बड़ा हेडेक बन गया है, क्योंकि लाइन से 9 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है। इसी लाइनअप में सबसे बड़ा धमाका होने वाला है जब शाहिद कपूर, कृति सनोन और रश्मिका मंदना की फिल्म कॉकटेल 2 का ट्रेलर आउट हुआ है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर तो लोग पागल हो गए हैं। एक केओटिक लव ट्राइंगल दिखाया गया है और इंटरनेट पर तो ऐसी अफवाहें चल रही है कि क्या कृति और रश्मिका का कोई ट्विस्ट है फिल्म में। स्टार्स ने तो हंसकर बात टाल दी, पर एक्साइटमेंट लेवल 100%।

पर है। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़े और चटपटे बॉलीवुड अपडेट्स। फिल्मों का सिलसिला चलता रहेगा और गॉसिप आती रहेगी, पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुनते रहिए अपना आपका स्टेशन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात और जहां मिलती है हर खबर सबसे पहले। चलिए दोस्तों आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में एक बेहतरीन गीत अतीफ असलम की आवाज में। ये गीत है तेरे नाल लव हो गया फिल्म से। इस गीत का नाम है तू मोहब्बत है। ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

और श्रोता दोस्तों, इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स। आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आया ये कार्यक्रम। और अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे वांछो श्रोताओं का समाचार, लेकिन हमारा संगीत में सफर जारी रहेगा।

0: इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि जुनले मनी बन मतातारिक बृहस्पतिवार ई पोहासों आजम बाजे पुनी मिनट मुक पिशम लकम वांचो साइका पा कपई पोवा का हो पहाई फाले वां का वांसु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए अनि जांग मोन मान जमी थम तो चो ओपों थो मुनोन अंग के वेलफेयर मोथो गवर्नमेंट ता आचों के होली मोट अंग यो ए ला टाइपु बोमा मान जमी थम तिंगसों नोक नियम फन अमाई अंग गवर्नमेंट Chazong kia nu ta to o le yu a zong among le ngô tay pu le vân le. Mô dia ja ka social media post ka ho po ma ngai vân le bo ma chi e des zong ma man zai mi tham sat vong security ho tong ho tsing sien chang tay pu le vân kia bo ma government e zing e jau kia PM Kisan Samman Nidhi hi a crop insurance scheme yin kia scheme e man zai mi tham income सेसन क्या मो मा जंग मो मान जाय सेक्टर आसाक आजों अंग क्या लम मा फोंग हुते पुले छु वन ले मोदी एज बो मा पीएम किसान पीएम कुसुम स्कीम मखंग ए मान जाय मि थम सोलर एनर्जी कपलो तैपु किसान क्रेडिट कार्ड मखंग ए होम ए जंग मो मान जाय हिया ओसम वक्सम निंग क्या होमो खो सथान पक मा लो इंटरेस्ट रेट मा मुनसेन लोन कपलो तैपु बो मा From seed to market scheme makang e manzai mi tem to hom e zang ha makang e alai eden kya lali sali produce po thajong ile changang puja wala kapalo ang kya lamma phong hutai pula chu vanda. Arunachal Pradesh lower Siang district to apong ang wang kya Union Minister of State for External Affairs and Textiles Pavitra Margarita Van Mani लेकाबाली होनोय मा डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स पंचायत लीडर्स थम या पब्लिक मेंबर्स थम ए हमेजंग मा ले जो पोने जाउ ले पंगले यूनियन मिनिस्टर मार्गरिटा ए हाजे फै मता रिव्यू मीटिंग टू सो मा वन क्या जंगमन मा गवर्नमेंट मोकसा के पंगनु हुली डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट मोत सत फो स्टेट फ्यूचर हन पंग मक्या चांगतेपु बो मा ग्रोथ या डेवलपमेंट डेटा फै तंबे ले आथोय आशम ले नाले अंग हालांकि प्रोजेक्ट पो थोपु मन पौपक खले यो टिकटो हम अंक मोट ले वन ले यूनियन मिनिस्टर है जो मा तू सो मा सेंट्रल हिया स्टेट निजो अंक मो मो फ्लैगशिप प्रोग्राम मो थोपो होमो खोसत पक टिकटो क्या बो मा हालांकि डेवलपमेंटल स्कीम पो होमो खोसत फन तांताई ले आमई आजोंग पुकु मा मोकसा अंक होमो खोसत का फन पो मो चू वन से ले अरुणाचल प्रदेश चीफ सेक्रेटरी मनीष कुमार गुप्ता मा आखो ले मनी होथम आचे तंगपा स्टेट लेवल एंड कोड मीटिंग टू सो आसो आपो ले बोमा हजा मा होथम आनत अंगपा स्टेट लेवल एंड कोड मीटिंग टू सो मा फनवन दौ क्या होमोक होसत फो ओबिल ले मोकसा अनहे लक्या पाक्चु टिकटो ले तु सो मा हजा बो मा डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन ड्रग हिंग हाई हांगसन अब अब अंक्या कानी हिया भंग कैथोम अब अजक अंक्या रिहेबिलिटेशन मेजर सिया सीज होन कपलो के नार्कोटिक हिंग हाई फो अम आशी ले आवत अंक्या निंक्या होमोकोसत फो ओबिल ले मोकोसा अंतै हे लक्या पक टिकटोले बो मातु सो मा चीफ सेक्रेटरी ए नशा मुक्त भारत अभियान स्कीम अंक्या होटोंग डिपार्टमेंट एस जेता होथम अंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पो तो हालक्या होमोकोसत फन आसा का मई पुकु मा डिस्ट्रिक्ट पो डीसी हिया पुलिस ऑथोरिटीज थम फाइ खले यो अलमलो ले मोकोसा अंक्या काचु कोले दिवंगली डिस्ट्रिक्ट डीसी बिकिर न्योरिक न्योरक ए अनि अनिनि होनोय सर्कुट हाउस मा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट होथम अंक्या कोऑर्डिनेशन मीटिंग टू सो आसो अफोले कहोमा अजंग बाजा तुसो मा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अनिनी हिया इटालियन होनोय गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल अंक्या प्रिंसिपल हेडमास्टर हिया नोकजो सब्जेक्ट लाइन ऑन मास्टर थम अंग होम स्कूल मा होता पर्सन जो पास रिजल्ट हाई क्या बो मा डिस्ट्रिक्ट जो मा क्लास पन लाइन ऑन सम एग्जाम रिजल्ट चु आवान थो ले जो समय ले हाई क्या हानपक मा अंग फेलिसिटेशन को तुन ले बो मा डीसी ए हजा एवर्ड कपलो क्या लाइन ऑन मास्टर थम आसू पुले अचोक असन क्या काचू गाय बल ले Namsai district ang kya hotam Azam angpa district task force for immunization DTFI meeting tuso mani Namsai DC conference hall ma angot asole. Aja tuso ma DTFI members tam district ma mokno sa angot ay kya universal immunization program moto homo koset pak tiketo kya mo ma honai kalachu asai alo honoi po to le immunization hingta python moto asak azong puku mamokosa angkya homokosat po mo vanezele bo ma tuso ma district ma preconception and prenatal diagnostic techniques PCN PNDT act vanlam may le implement honcha la kya pak tikto kya bo ma 108 ambulance hingham gari po homokosat mo chu vanezele 2026 FIFA World Cup football baupan tuso hovang match South Africa ya Mexico des ni bama abau apan le ani makeng hovang wangle bo ma ja tournament United States Canada ya Mexico des po ma hai angke July le ni ban aku tarik kap le aso apo ai changte le ka ho ma ajang ba ja tournament ma ban ani group ang ahan le puni achat teams punam ban ani Group stage match boma saban ani knockout match ma ambawapan ay changtele boma tournament angkya hosuk final match July le niban aku tarik ni ambawapan le satay kaho ivai. Ija Akashwani Itanagar kaupay masay apahay. Pongwang ija tsay wangkap.
1: श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे वंचो श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे और इस कार्यक्रम को अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर तो चलिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं हमारा संगीतमय सफर एक बार फिर से आइए सुनते हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स

और श्रोता दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है ये कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz। और श्रोता दोस्तों, अभी कुछ पलों के लिए, अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे इदुमिस्मी श्रोताओं का समाचार।

दोस्तों हमारी स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 4:16, 17 मिनट। आई एम सॉरी। हाँ जी, तो मेरे प्यारे दोस्तों, घड़ी की सुइया इस बात का इशारा कर रही है कि अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज का सफर आप सभी के साथ हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत और कमाल का रहा। थैंक यू सो मच फॉर सावरिंग ऑल योर लव्स एंड ट्यूनिंग इन। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है बॉस, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। मेरा सफर यही तक था, लेकिन आपका एंटरटेनमेंट नॉनस्टॉप चालू रहने वाला है। मेरे ठीक बाद इस माइक को संभालने आ रही है एक ऐसी वॉइस जो आपके दिन को और भी ज्यादा ब्राइट बनाने वाली है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द आरजे नीलम थापा। नीलम जी बिल्कुल तैयार है आपके लिए देर सारे सुपर हिट गाने और देर सारी मस्ती लेकर। सो कहीं मत जाना, अपनी सीट पर टिके रहो और दिल थाम कर सुनते रहो अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे थंग्स अश्रोताओं का समाचार। और जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आज की इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर एते तथा तकनीकी अभियंता के नंद कुमार। अब मुझे यानी आपके दोस्त को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप रॉकिंग। बाय बाय।

अभी आप सुन रहे थे टांगसा श्रोताओं का समाचार। टांगसा श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस तीसरे प्रसारण सभा में आज मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी नीलम। जी हां श्रोता मित्रों, दूसरी प्रसारण सभा के खूबसूरत सफर का आप आनंद ले रहे थे आरजे दागमे नानास के साथ। आरजे दागमे नानास, स्टूडियो के आगे की जिम्मेदारी मुझे सौंपने के लिए और मेरे परिचय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 4:28 हो रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इसे तीसरी प्रसारण सभा का आरंभ करते हैं और पेश करते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर।
1: ईटानगर

श्रोता मित्र कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर के तहत आज हम बात करेंगे देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सार्वजनिक संपत्ति के प्रति हमारे कर्तव्य के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सार्वजनिक संपत्ति के बारे में। सार्वजनिक संपत्ति यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी वो है जो सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित है। इस पर सरकार का अधिकार होता है। सड़क, रेलवे, बस, बिजली, झील, उद्यान, स्टेडियम, स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय, ऐतिहासिक स्मारक आदि, ये उन्नति के लिए अनमोल होता है। जिस तरह हम व्यक्तिगत संपत्ति यानी कि पर्सनल प्रॉपर्टी की सुरक्षा और सम्मान करते हैं, उसी तरह सार्वजनिक संपत्ति की भी सुरक्षा करनी चाहिए जो पूरे राष्ट्र की है। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही चले अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक गीत का। आपको सुनवाते हैं दंगल फिल्म से ये बेहद ही खूबसूरत गीत जुनिता गांधी की आवाज में।

श्रोता मित्रों, ऐसा देखा जाता है कि प्रशासन या सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है और इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। किसी भी राष्ट्र की सार्वजनिक संपत्ति आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए होती है, इस कारण इनकी सुरक्षा करना सरकार से ज्यादा हमारी जिम्मेदारी होती है। जी हाँ श्रोता मित्र, एक बार फिर से आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर, जिसके तहत आज हम बात कर रहे हैं सार्वजनिक संपत्ति और इसके प्रति हमारी यानी कि एक जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्य के बारे में। तो चलिए इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है कार्यक्रम में अगले गीत का।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे इस खूबसूरत गीत को काय पोचे फिल्म से अमित त्रिवेदी और मोहन कैनन की आवाजों में। श्रोता मित्रों, सार्वजनिक संपत्ति के प्रति सम्मान व उनकी सुरक्षा हम सभी का दायित्व होता है। इन चीजों को बनाने या खरीदने में बहुत पैसा खर्च होता है। अगर हम देश के नागरिक इन सार्वजनिक सुविधाओं का ठीक से उपयोग नहीं करते हैं या हम उन्हें नष्ट कर देते हैं तो उन्हें बदलना आसान नहीं होगा। देखा गया है कि लोग रेलवे के कुछ हिस्सों को हटाकर दुर्घटना का कारण बनते हैं और चोरी या क्षति पहुंचाते हैं। इस असामाजिक व्यवहार का खामियाजा दूसरे लोगों को भुगतना पड़ता है। कभी कभी बिजली टेलीफोन लाइनें काट दी जाती है और चोरी हो जाती है। एक अच्छे नागरिक के रूप में ये हमारा कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग उतनी ही सावधानी से करें जितना कि हम अपनी चीजों का उपयोग करते हैं। इसके दुरुपयोग से खुद को और सभी को असुविधा होती है। हमें एक आरामदायक और सुखी नागरिक जीवन के लिए सहयोग की भावना विकसित करनी होगी। हम सभी को एक साथ काम करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सभी के लाभ के लिए मौजूद सुविधाओं को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य होता है। तो चलिए, इसी के साथ ही अब हम कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर आ पहुंचे हैं। इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: जी हाँ श्रोता मित्रों, कार्यक्रम इवनिंग गुड इवनिंग ड्राइव कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का ये आखिरी गीत आप सुन रहे थे बर्फी फिल्म से, जिसे आवाज दी है निखिल पॉल जॉर्ज ने। और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे बारी बारी से समाचार। पहले आप सुन पाएंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और 5 बजते ही आप सुन पाएंगे नुक्ते श्रोताओं का समाचार। फिलहाल कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सराहना की। कायस नीति ने अरुणाचल प्रदेश को सिर्फ एक सीमावर्ती राज्य के तौर पर नहीं बल्कि भारत के रणनीतिक गेटवे और सांस्कृतिक सीमा पर तौर पर पहचान मिली है। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्री पीडी सोना ने विधायक और सलाहकार मीपू मोहित के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश लोअर सुबनसिरी जिला स्थित सेंट क्लेरेट कॉलेज जीरो के सोशल वर्क विभाग में IPS अधिकारी रॉबिन हिबू को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपने चरम पथ पर चल रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ती जा रही है। श्री मोदी ने कहा है कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इससे सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर के सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
2: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
1: श्री वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए यह पहल शुरू की गई है।
2: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सराहना की है। कहा कि इस नीति में अरुणाचल प्रदेश को सिर्फ एक सीमावर्ती राज्य के तौर पर नहीं बल्कि भारत के रणनीतिक गेटवे और सांस्कृतिक सीमा के तौर पर पहचान मिली है। उन्होंने कहा है कि तिब्बत, भूटान और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने और 1080 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने की वजह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश भारत के रणनीतिक और विकास से जुड़े विजन का एक अहम स्तंभ बनकर उभरा है। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार 12 साल की सेवा पूरी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए श्री खांडू ने इस कार्यकाल को बदलाव लाने वाले शासन, दूरदर्शी नेतृत्व और अभूतपूर्व विकास का दौर बताया। इस दौरे में अरुणाचल प्रदेश और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की दिशा में को पूरी तरह से बदल दिया है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती राज्य के विकास के लिए भारत सरकार से मिले लगातार समर्थन, मार्गदर्शन और प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया। राज्य के पर्यटन मंत्री पीडी सोना ने विधायक और सलाहकार मोपी मिहू के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय परिवर्तन पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से का मुलाकात की। श्री सोना ने कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट में बैठक में राज्य की चल रही पर्यटन पहलों पर विचार विमर्श किया गया और पर्यटन के बुनियादी ढांचे, गंतव्य विकास और अरुणाचल को एक अद्वितीय और टिकाऊ पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं के बारे में चर्चा की गई। गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिला स्थित सेंट क्लेरेट कॉलेज जीरो के सोशल वर्क विभाग में आईपीएस अधिकारी रोबिन हिबू को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। कॉलेज की ओर से जारी इस प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक दिल्ली पुलिस के जरिए भेजे गए प्रस्ताव के बाद मंत्रालय ने 20 मई को एक आधिकारिक सूचना जारी कर ये मंजूरी दी थी। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले शुरू किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए हैं। इसमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान की मीडिया ने बंदर अब्बास, कैशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों में विस्फोट की सूचना मिली है।
3: मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जोर्दा में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जोर्दान के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जोर्दान या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद ड्रोन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: सरकार ने साइबर अपराधों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित की जाएगी। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
5: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं, प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: This is Akashvani, the news read by Priya Badu. Prime Minister Narendra Modi has said that despite the world passing through a period of uncertainty and instability, India continues to advance on its growth trajectory with confidence and determination. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, Mr. Modi said, "As India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the center and states become even greater." The Prime Minister highlighted that creating the right ecosystem for the country's youth through quality education, demand-driven skilling and employment opportunities must remain a priority. The Prime Minister said women-led development is a cornerstone of the vision of Viksit Bharat. The meeting is deliberating on measures to promote entrepreneurship, enhance skilling and create sustainable employment opportunities across the country. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at the Rate 2047. Union Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav today virtually inaugurated a 20-kilowatt FM transmitter at Ramghar in Rajasthan's Jaisalmer district during a program held at the Akashvani premises in Jaipur. With this addition, the total number of FM transmitters in the state has risen to 39. The new transmitter will provide radio coverage within an 80-kilometer radius in border areas, providing people access to a wide range of information, educational content and entertainment programs. The government has waived excise duty on certain variants of ethanol-blended petrol. In a notification, the Union Finance Ministry announced that petrol blended with 22%, 25%, 27% and 30% ethanol have been exempted from the central excise duty. The move is aimed at strengthening India's ethanol blending program, which seeks to reduce dependence on imported crude oil, cut carbon emission and enhance demand for domestically produced ethanol. The center has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cyber Crime Coordination Center under the Ministry of Home Affairs, cyber criminals are increasingly using AI to create realistic deepfake videos and synthetic identities. Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu today expressed happiness over the maiden test flight of the first made-in-India Airbus C295 from Vadodara in Gujarat. In a social media post, Mr. Naidu said this is more than just an aircraft taking to the skies. It also reflects the country's growing capabilities in aerospace manufacturing. Enforcement Directorate is conducting search operation at 5 premises in Hyderabad, Telangana in connection with the alleged transport scam involving the Andhra Pradesh State Beverages Corporation Limited. According to ED officials, the accused persons allegedly caused a wrongful loss of more than 195 crore rupees to the government's exchequer while deriving the corresponding unlawful gains for themselves and their associates. In a landmark judgment that is said to give more recognition to household work, the Supreme Court today said that homemakers deserve to be recognized as nation builders for their role in shaping families and future generations. The apex court ruled that unpaid domestic work must be monetized at a minimum of 30,000 rupees per month while calculating compensation for their deaths in road mishaps. The court said that women who manage households should not be referred to merely as homemakers, but as the term undervalues their contribution to society. All three Indian seafarers who were initially reported missing after the tragic incident aboard the commercial vessel Palau-flagged MT Setbelo have now been confirmed dead. The tanker was hit off the coast of Oman in a suspected U.S. missile strike. In a social media post, Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal, said bodies of three seafarers have been located and identified. The United States has carried out a second consecutive night of what is described as self-defense strikes against Iranian military infrastructure near the Strait of Hormuz, further escalating tensions in West Asia. In response, Iran launched missile and drone attacks on several U.S. military facilities across the region, calling them retaliation for the latest American action. Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. This edition of the World Cup will be biggest in history, with an expansion from 32 to 48 team. A record 104 matches will be played, with 72 in the group stage and 32 in the knockout runs across host nations, United States, Canada and Mexico. That is all in this news bulletin. Namaskar.

아야 아까스와니 이타나거 제터스테 지멍셋나 준디아 하제키니 야오키니 서로 우영 아만네 젠방로 바나추 네 젠트무니

अभी आप सुन रहे थे बारी बारी से समाचार। पहले आपने सुना हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और अभी आप सुन रहे थे नुक्ते श्रोताओं का समाचार। श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि नुक्ते श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेव चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलो हर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस सफर में आपके साथ हैं आपके अपनी रेडियो साथी नीलम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5:08 हो रहे हैं। और इसी के साथ ही लीजिए अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव। कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। श्रोता मित्रों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं और रोमियो फिल्म का ये गीत।

जी हाँ श्रोता मित्रों, इवनिंग ड्राइव कार्यक्रम का ये पहला गीत आप सुन रहे थे और रोमियो फिल्म से मधुबंती बागची और जावेद अली की आवाजों में। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म आंखों की गुस्ताखिया फिल्म से।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आप बने हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब। और कार्यक्रम के तहत आप आनंद ले रहे थे दो दीवाने शहर में फिल्म के इस खूबसूरत गीत का। तो चलिए इसी के साथ ही श्रोता मित्र, आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत। जी हाँ, इसे फिल्म से।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे दो दीवाने सहर में फिल्म से। ये बेहद ही खूबसूरत गीत विशाल मिश्रा की आवाज में और ऐसे खूबसूरत गीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि हिंदी फिल्मी गीतों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तो आप जुड़े रहे हमारे साथ यानी अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्रों, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगा हर्ट्स पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम शाम की महफिल का। जी हाँ दोस्तों, शाम की महफिल प्यार भरे एक खूबसूरत संगीत यात्रा। तो चलिए इसकी शुरुआत करने से पहले अर्ज है, क्या लिखूं तुझ पर, कुछ लफ्ज नहीं है, दूरी का एहसास लिखूं या बे इंतहा मोहब्बत की बात लिखूं, एक हसीन ख्याल लिखूं या तुमको अपनी जान लिखूं, तुम्हारा खूबसूरत ख्याल लिखूं या अपनी मोहब्बत का इंतजार लिखूं, तूने ही मुझे लिखा अपने प्यार की कलम से, ए मेरे प्यार बता तुझको मैं किस तरह लिखूं। तो चलिए इन शब्दों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं, जी हाँ, बॉडीगार्ड फिल्म का ये गीत सुनवा रहे हैं, जिसे आवाज दी है राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल ने।

दोस्तों, मोहब्बत के दो पहलू, मिलना और बिछड़ना। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। मिलन से जहां जीवन में खुशियां और गहरा अपनापन आता है, वहीं जुदाई या बिछड़ना हमें धैर्य और सच्चे प्यार का असली अर्थ सिखाता है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

जी हाँ दोस्तों, अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल और प्रीतम की धुन और अरिजीत सिंह की खूबसूरत आवाज से, जी हाँ, ये संगीत, जी हाँ, इसे गीत को आप सुन रहे थे ब्रह्मास्त्र फिल्म से। दोस्तों, शाम का वक्त है और अरुण एफएम पर ये प्यार भरे संगीत का सफर शाम की खूबसूरती को और भी बेहतरीन बना देती है। उम्मीद है आप सभी इन गीतों का आनंद ले रहे होंगे। श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि फिलहाल हम ले रहे हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्र, ऐसे खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे फिल्म में वापस आऊंगा से। आपको बता दें कि इस गीत में धुन दिया है AR रहमान ने और लिखा है इरशाद कामिल ने, और इसे अपनी आवाज से सजाया है नीलांजना घोष और वेदांग रैना ने। आपको ये भी बता दें कि इम्तियाज अली की ये फिल्म कल यानी कि 12 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

श्रोता मित्रों, कार्यक्रम शाम की महफिल का ये आखिरी गीत आप सुन रहे थे मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म से श्रेया घोषाल और विनोद राठौर की मधुर आवाजों में। जी हाँ श्रोता मित्रों, कार्यक्रम शाम की महफिल प्यार भरा एक खूबसूरत संगीत यात्रा का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे हमारा विशेष कार्यक्रम व्हाट्सएप अरुणाचल, तो आप जुड़े रहें अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: सर्वेक्षण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की 23.2% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। महिलाओं में यह आंकड़ा असम की तुलना में काफी अधिक है, जहां 5.8% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। पुरुषों में अरुणाचल प्रदेश में शराब सेवन की दर 50.5% दर्ज की गई है। तुलना में असम में 23.8% पुरुष शराब का सेवन करते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार महिलाओं में अरुणाचल प्रदेश में शराब सेवन की दर उल्लेखनीय रूप से अधिक दर्ज की गई है। पुरुषों में भी अरुणाचल प्रदेश में शराब सेवन की दर 50.5% दर्ज की गई है, जो राज्यों में सबसे अधिक आंकड़ों में शामिल है। अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं और पुरुषों दोनों के बीच शराब सेवन का स्तर उल्लेखनीय रूप से अधिक दर्ज किया गया है। सर्वेक्षण वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित किया गया था और इसके निष्कर्ष हाल ही में जारी किए गए हैं। NFHS 6 के निष्कर्ष बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं और पुरुषों दोनों के बीच शराब सेवन की दर देश में सबसे अधिक बनी हुई है। यह स्थिति जन स्वास्थ्य और जागरूकता के क्षेत्र में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
1: ऑलराइट, डिस्कशन का शुरुआत करना चाहूंगा मैं डॉक्टर लोवांग से। सर, अभी जब हमने ये रिपोर्ट देखा, इसमें वी कैन सी 50.5 इज अ बिग नंबर। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, फ्रॉम पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव, ये जो डाटा है इसको आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको?
2: देखिए, हमने अभी जो मैंने देखा है, हमने जो रिपोर्ट देखा है, जिसमें कि जो है हमारे ऑलमोस्ट अराउंड 50% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन अबव 15 इयर्स एंड अबव, तो उनका जो है मेल में और 1/4 जो फीमेल में देखा गया है। तो इसमें जो नजर आता है कि फिर व्हेन यू सी द रिपोर्ट्स, इसमें आपका ये भी आता है कि फिर जो रूरल जो बैकग्राउंड में है, जो ज्यादा नंबर पे हैं अर्बन से, तो जिस फीमेल हो या मेल हो, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि फिर क्योंकि रूरल एरिया में है, तो फिर हमारे जो कस्टमरी जो होते हैं, ट्रेडिशनल जो है ये होते हैं, तो उसमें जो हमारे शराब का जो दारू का जो हम जो यूज करते हैं, तो इसी चीज पर भी नजर आता है कि फिर क्यों जो है अल्कोहल यूज इन आर डिसन कम्युनिटी इज मोर इन रूरल एरिया ऑल्सो, एंड दैट अफेक्ट्स द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ आवर एंटायर स्टेट्स। तो हमारे जो जितने भी रूरल एरिया में है, तो कस्टमरी लॉस है, हमारे जो रिचुअल्स है, जो हर समय स्टार्ट विद अल्कोहल एंड एंड्स विद अल्कोहल, तो यही चीज मैं देखना चाहता हूँ। इसमें जो है एक अच्छी बात है कि फिर लास्ट स्टडी से जो है कम दिखा गया इस बार जो है बोथ मैन एंड फीमेल के, फिर भी हमारे जो नेशनल जो रिपोर्ट जो एवरेज 18.1 है, उससे हमारा काफी ज्यादा है। तो यही एक चीज सोचने के बारे कि हम कहाँ पे हैं और क्या कर सकते हैं। पर एक मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट पे कि ये अल्कोहल जो है हम पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में जब जाएंगे तो अब नजर नहीं आता कि फिर ये एक्चुअल में जो है किस तरह के स्टडीज है जो कि हमारे स्टेज को जो है इस तरह से नजर आ रहा है। बिकॉज हम जब देखते हैं तो फिर इसका कोई एक ऐसा होना चाहिए कि दारू जो पीते हैं वो कितने पी रहे हैं, कितने जो क्वांटिटी में पी रहे हैं, और उसका जो एक एक मात्रा हमें जो दिखाया जाता है, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ हमारे स्टेज में अल्कोहल से इतना पीड़ित लोग है। मे बी दिस इज जस्ट जो हमारे कस्टमरी जो है अल्कोहल यूज करते हैं, उसी के सर्वे पे आया होगा शायद। तो मे बी लाइक वी नीड टू जस्ट गो डीपर इनटू दैट वन, एंड एज अ पब्लिक हेल्थ बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं, तो हम इस चीज को या तो फिर हमारे स्टेट लेवल से अगर हम इस चीज को हम स्टडी कर सकते हैं, तो फिर आई थिंक इट विल बी बेटर टू मेक पॉलिसी मेकिंग हो या किसी भी हो, हम इस चीज को हम ज्यादातर जा सकते हैं।
1: Definitely, definitely. That was a good starting. Definitely, the sample size and what are the parameter, that is also very important. And I would like to come to Dr. Miso. Sir, aapka pura psychiatric mein aapne service diya hai sir. So sir, when it becomes, because alcohol consumption is very common in traditionally we also consume, sir ne just abhi bataya. So when it becomes a problem, when it becomes a concern, इसके बारे में थोड़ा बताइए।
3: या जैसे आपके डॉक्टर दीपू ने बोला है, तो हमारा अरुणाचल में या तो अल्कोहल यूज जैसे आपका डाटा आया है उसका उस हिसाब से इतना मे बी इसमें थोड़ा ज्यादा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्लियर नहीं है कि अब कितना ज्यादा हार्मफुल यूज है। हार्मफुल मैंने जो हानिकारक यूज है, या मैंने रूटीनली कभी कभी ओकेशनल पीने वाला है, या सोशली कभी कभी पीने वाला है, तो उसमें क्लियर तो नहीं हो रहा है। लेकिन हम तब कहेंगे जब मेंटल ये आपका जो हमारा शरीर के लिए हार्मफुल है, तब कहेंगे जब अगर रोज रोज पीते हैं लोग। मैंने मुझे लगता है कि

0: अल्कोहल नहीं लेने से मुझे मेरा काम नहीं हो पा रहा है, या मेरे जो काम कर रहे थे उसके कारण से मैं अपना काम अल्कोहल के कारण से काम नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे अब पढ़ाई नहीं कर पा रहा, ड्यूटी नहीं जा पा रहा, तो या अपने कुछ बीमार हो गया उसके कारण से ना, तो ये चीज अगर सिम्टम होता है कुछ अर्ली सिम्टम बोल सकते हो आप ना, कि माने ये आप अल्कोहल जो ले रहे हैं आप हार्मफुल यूज में ले रहे हैं, माने गलत तरीके से ले रहे हैं या ज्यादा ही ले रहे हैं माने, तो उसमें आपको ध्यान देना होगा.
1: ओके ओके सर, इसमें एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगा सर. ऐसा मिसकंसेप्शन भी बहुत सारे रहता है सर, एंड देयर आर सम पीपल हु यूज्ड टू से कि मेरा तो एक डेली में एक पैग लेने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इट्स लाइक ए मेडिसिन. तो व्हाट आर द कॉमन मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू अल्कोहल कंजम्पशन सर, वो भी थोड़ा बताइए सर.
0: बहुत लोग इवन कोई डॉक्टर लोग भी कहते हैं कभी कभी मजाक में भी कह लेते हैं कि थोड़ा हमारा बॉडी में स्पेशली गांव में जाने से ना, तो कहते हैं कि हमारा शरीर में थोड़ा सा अल्कोहल जरूरत है, ऐसे कहा जाता है
1: जी.
0: तो एक्चुअली सच में ये मिसकंसेप्शन ही है एक्चुअली बोलने से, क्योंकि अल्कोहल एज सच तो हमारा जो बॉडी में जो होता है ऑलरेडी होता है हमारा फर्मेंटेशन वगैरह से इनसाइड में, लेकिन जो एक्सटर्नली जो बोलते हैं ना कंजम्पशन जो है, तो उसका रिक्वायरमेंट बोल के एज सच नहीं होता है. तो कंप्लीट टीटोटेलर भी होता है जो बिल्कुल नहीं पीते हैं, उनमें भी कोई ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं होता है जो अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम होना चाहिए, मैंने ये माने अल्कोहल नहीं होने से पीने से या पीना ही ये करके सब नहीं होता इसमें. तो इवन स्लाइट अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन भी थोड़ा से भी लेने से भी क्या कि इवन हार्ट को भी इफेक्ट पड़ता है, हार्ट का साइज को बड़ा कर देता है, कार्डियोमायोपैथी वगैरह बोलते हैं. तो ऐसा नहीं कि आप एक पैक ही रोज लेना वो सेहत के लिए अच्छा है, ऐसे बात नहीं है. ओकेजनल आप ले सकते हैं जैसे कि सोशली कभी कभी ना वो, लेकिन नशा होने तक मैं तो बोलता हूँ कि नशा होने तक मत लीजिएगा. तो नॉट मोर देन 30 ml ना, तो ऐसे कंजम्पशन नॉट इन डेली बेसिस पे नहीं करना है, जैसे कि महीना में हफ्ता में या कभी कभी हाँ फेस्टिवल में वो ऐसे वो एक्सेप्ट कर सकते हो आप.
1: ओके मैं लोहन सर के पास आना चाहूंगा सर. डायरेक्टोरेट का इसमें भी बहुत सारा रोल है सर, लाइक अवेयरनेस के रिगार्डिंग अवेयरनेस ऑल्सो. सो व्हाट आर द इनिशिएटिव बीइंग टेकन बाय द डायरेक्टोरेट, और क्या क्या कुछ प्रोग्राम है स्कीम है उसके बारे में थोड़ा बताइए सर.
2: अच्छा, ये है इस चीज पे हमारे ग्रासरूट लेवल पे हमारे बहुत सारे काम चलते हैं इस चीज पे, कि लोग हमारे जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, तो इन ये जो है कम्युनिटी से जुड़ा होता है. तो ये हेल्थ वर्कर जो है जगह जगह पे जाते हैं, तो इनके हेल्थ प्रमोशन होते हैं वो हर लोगों को देते हैं, और हर सेकंड सैटरडे एवरी मंथ हमारा जो है हेल्थ आरोग्य शिविर होते हैं, और इसमें आरोग्य शिविर जो हेल्थ मेला टाइप के होते हैं, तो इसमें हेल्थ प्रमोशन टॉक्स होते हैं. तो इट इंक्लूड्स सब्सटेंस यूज मिस यूज वगैरह सब चीज का. तो इट्स नॉट ओनली अल्कोहल, इसमें जो शराब के अलावा भी टोबैको हो गया, कई बाकी जितने भी नशे जो चीजें होते हैं, इवन हेल्थ प्रमोशन कैसे किया जा सकता है, वेलनेस एक्टिविटीज वगैरह ये दिया जाता है. तो ये नॉर्मल हमारे रूटीन प्रोसेस में ही है. इनके अलावा भी जो है हमारा जो बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं, तो इस चीज में अल्कोहल का जो एक बड़ा एक चीज है कि हम उसको स्टडी करते हैं, स्क्रीन करते हैं इनको. तो अगर इनके अल्कोहल के दो चीज होते हैं, एक जो है हम अल्कोहल को रोकने का, दूसरा जो अल्कोहल हो गया पीने लग गया तो उनका जो बीमारी आ गया तो फिर उससे जो है हानिकारक ना हो, इससे बॉडी पे असर ना पड़े, तो उसका हम स्क्रीनिंग करते हैं. तो अगर जल्द से जल्द पकड़ेंगे तो फिर इनका रेफरल्स होते हैं, इनके ट्रीटमेंट जल्दी हो जाएंगे, तो वो जो अल्कोहल से जो हमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं लीवर में आते हैं बाकी चीजों में आते हैं वो कम करने के लिए हम जो है इनके स्क्रीनिंग करते हैं. उनका जैसे ही पकड़ा जाता है तो उसको हेल्थ प्रमोशन हेल्थ अवेयरनेस देके और आगे ट्रीटमेंट जहाँ जरूरत पड़ता है तो वैसे करते हैं.
1: ओके एंड सर, हाउ इज द रिस्पांस फ्रॉम द कम्युनिटी, जैसे आप फील्ड में जाते हैं तो हाउ इज द रिस्पांस.
2: देखिए, फील्ड में जाते हैं तो फिर इसमें एक चीज है कि हम अब चीजें बदल गए, अब पहले की तरह नहीं कि हम रेगुलेशन लगाते हैं
1: जी,
2: अब ये नहीं रहा. आजकल जमाने में जो है वो चीजें बदल गए हैं, तो हम इनको अवेयरनेस करते हैं, तो ग्रासरूट लेवल से कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कराते हैं. तो पहले क्या होता था कि हम ऊपर से रेगुलेशन लगाते थे, अब वो नहीं होकर अब हम जाते हैं ग्रासरूट लेवल में जाके उनको जो है अवेयरनेस देते हैं, कम्युनिटी बेस इन लोगों को भी सिखाते हैं, और एक जन आरोग्य समिति है हमारा जो जो इसमें पब्लिक लोग रहते हैं, तो इन लोगों को भी हम समझाते हैं कि ये जो चीजें करना है तो इनके भी सहायता होते हैं. तो जब तक हमें कम्युनिटी से सपोर्ट ना मिले तो फिर हम ये चीजें जो है हम जड़ से उखाड़ना मुश्किल हो जाते हैं. तो हमारा ये कोशिश रहता है कि हम जितने भी हो सके हम इनको हम समझाएं, ताकि चीजें वहीं से लौट के आए अवेयरनेस के.
1: राइट,
2: तो ये हमारे

0: So involvement of the community is very important, and sir is telling that in Arunachal people participation is there, involvement is there. Good to note that, sir. Main sir ke paas aana chahunga, Dr. Yube ke paas. Sir, you must have come across various cases of alcohol dependency. Yes. People or addiction. So uska early signs, how do we identify, what are the early signs
1: alcohol ke na?
0: Yes.
1: तो पहले भी मैंने शॉर्ट में एक चीज बताया था जो मतलब अल्कोहल के कारण से कुछ बिहेवियर में चेंज आ रहा है या उसका काम काज में कुछ चेंज आ रहा है. मतलब पहले रूटीन में चेंज आ रहा है. पहले जैसे कि आपका हॉबीज वगैरह होता था ना, काम में टाइम में जाता था या टाइम में उठता था. हाँ, जो मूड जो है थोड़ा चेंज आ रहा है तो ये भी एक अर्ली साइन बोल सकते हो. या कभी कभी कंपन हो जाए दारू नहीं पीने से, अल्कोहल नहीं लेने से कांपने लग जाए, शरीर कांपने लग जाता है, हाथ पैर कांपने लग जाता है. तो ये मैंने अब अगर दारू पीने नहीं करने से क्रेविंग बोलते हैं क्या बोलते हैं आपके क्रेविंग होने लग जाता है. तो ये चीज जो है आपको अर्ली साइन एक तोड़ के अपने
0: इसमें एक और मेरा सवाल ये रहेगा सर, जैसे समवन इज कंज्यूमिंग अल्कोहल ऑन डेली बेसिस, एडिक्शन है सर, तो ऑल ऑफ सडन हाउ डू यू कन्विंस दैट पर्सन कि इसको छोड़ना है, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. कैसे कन्विंस करते हैं सर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू?
1: पहले तो ये होता है कि उसको एहसास दिलाना है कि अल्कोहल कंजम्पशन इज नॉट गुड. ऐसे डिपेंड ये जो होता है एडिक्शन ऐसे होता है कि एडिक्शन का मीनिंग ऐसा है कि आप जो काम है मैंने जो भी कर रहा है मतलब गलत कर रहा है, जैसे कि आपका सब्सटेंस जैसे कि अल्कोहल ले रहा है तो दारू को मुझे पता है कि मेरे दारू पीने से हानिकारक है तो पता होते हुए भी ले रहा है. हाँ. मैंने उसको हम एडिक्शन बोलते हैं, डिपेंडेंट भी मेडिकल टर्म से डिपेंडेंट भी बोलते हैं हम डिपेंडेंट करके. तो उसको ऐसे कि ना उसको रीओरियंटेड करना कि आपको ये देखो ये आप जो भी ले रहा है बहुत सारा हानिकारक आपको भी पता है लेकिन उस कारण से आपका फैमिली में कैसे असर डाल रहा है, आपका समाज में क्या असर डाल रहा है, अपने पर्सनल लाइफ में भी क्या असर डाल रहा है आपका. जैसे कि आप खुद का अगर शादीशुदा होगा तो फैमिली में ऑब्वियसली असर 100% डालता ही डालता है, प्रॉब्लम हो जाता है. स्पाउस के बीच में कुछ कहा सुनी प्रॉब्लम हो जाता है तो बच्चों के साथ में प्रॉब्लम हो जाता है. तो ये चीज उनको एहसास दिलाना पड़ता है, दिला के फिर उसको हम मतलब अपने वो फैमिली के रोल बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें एक्चुअली. तो फैमिली भी उनको समझाते हैं तो फैमिली की तरफ से वो लेके आते हैं यूजली तो उनका तो हम इस तरह से माने उसको कन्विंस करते हैं कि आप करना है मतलब छोड़ना है करके.
0: बट सर उसमें एक प्रॉब्लम ये रहता है कि पीपल हु आर एडिक्टेड टू अल्कोहल एनी सब्सटेंस फॉर एग्जाम्पल दे हेजिटेट टू अप्रोच और सीक प्रोफेशनल हेल्प सर. तो उसमें फैमिली का क्या रोल रहता है एंड हाउ डू यू एनकरेज दोज पीपल टू कॉन्टेक्ट प्रोफेशनल हेल्प?
1: सो अल्कोहल का यूजर जो है सेल्फ आना अवेयर होके आना बहुत कम लोग में आता है क्योंकि मुझे लगता है पीने अच्छा है ना, काफी कुछ कारण से लोग जो दारू पीते हैं फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, सोशल ड्रिंकिंग करके एडिक्ट होके हो सकता है. तो इसलिए साइड बाय साइड बाकी चीज को भी रोल सॉल्व करना जरूरी होता है हो जाता है. तो इसलिए कि मैंने उसको
0: कैसे कन्विंस करना है, कैसे इनको एनकरेज करना है कि प्रोफेशनल हेल्प के लिए?
1: तो पहले तो होगा कि जब नया नया ले रहा होगा मैंने जब उसको पहले तो फैमिली से पोस्ट करके या उनको समझा बुझा के लेके आके ट्रीटमेंट करना जरूरी है. जब तक उसका विड्रोल नहीं हट जाता है मतलब उसका फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम मेंटल जो एक्यूट मेंटल प्रॉब्लम होता है इमीडिएट जो होता है दारू छोड़ने के कारण से जो पागलपन हो सकता है कुछ भी हो सकता है, मैंने शरीर साथ नहीं दे रहा है मतलब कांपने लग जाता है, कोई बेहोशी हो जाता है तो ये चीज ट्रीटमेंट करने को उसको फिर हम काउंसलिंग देते हैं मैंने उसको कि आप देखो तब हम एक्चुअली मोटिवेशन ट्रीटमेंट बोलते हैं, मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी करता है ऐसे कुछ करके होता है, साइकोथेरेपी बोल सकते हो. तो उसको कन्विंस करना पड़ता है कि मैंने उसको समझाना पड़ता है कि देखो आपका अल्कोहल के कारण से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अल्कोहल तो हानिकारक है, आपने देखो इतना छोड़ दिया है बहुत मुश्किल से छोड़ रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है तो आगे पीने से क्या होगा, आपको क्या नुकसान होगा, पर्सनल लाइफ में क्या नुकसान होगा, आपका फैमिली लाइफ में क्या नुकसान हो रहा है और होगा मैंने. तो ये चीज उनको समझा देने से तो धीरे धीरे करके तो मल्टीपल टाइम चाहिए होता है, रिलेप्स वगैरह बहुत कॉमन होता है इनमें तो कभी कभी धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हैं. अपने आप सेल्फ अवेयर होना, अंडरस्टैंड होना, सेल्फ जो है मुझे छोड़ना है करके उसको अंडरस्टैंड कराने के लिए वो काउंसलिंग बहुत जरूरी है.
0: ओके. मैं लॉन्ग सर के पास आना चाहूंगा सर. देखा जाए तो सर अरुणाचल प्रदेश जैसे आपने भी ओपनिंग लाइन में भी आपने भी मेंशन किया था कि हमारा ट्रेडिशन कल्चर में भी कंजम्पशन ऑफ बीवरेजेस अल्कोहलिक बीवरेजेस आर ऑलरेडी देयर. हमारा फेस्टिवल्स होता है फ्रॉम जन्म लेने से लेके पूरा डेथ तक पूरा प्रोसेस में अल्कोहल इज इन्वॉल्व सर. तो एज ए डिपार्टमेंट हाउ डू यू क्रिएट अवेयरनेस एंड क्या क्या चैलेंजेस आते हैं सर? आप लोग कैसे पीपल को हाउ डू कन्विंस सर?
2: इसमें एक्चुअली अवेयरनेस जो है इसमें एजुकेशन इज वन इम्पोर्टेंट थिंग. तो एक इन्फॉर्म होना पड़ेगा पब्लिक एवरीवन. तो इन्फॉर्म होना पड़ेगा तो फिर हम ये चैलेंजेस इसको बहुत सारे लेते हैं कि बचपन से हम यूज करते हैं ठीक है ना. 15 साल के बताए देखिए 15 साल मीन्स आपका जो है क्लास 9-10 के बच्चे होंगे. तो अभी हमारे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम भी है. तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में हर टीचर्स को जो है एक स्कूल हेल्थ एम्बेसडर्स बनाते हैं. वो जो है टीचर्स जो है हफ्ते में तो फिर इस चीज पर सब्सटेंस यूज पर भी 10 ऑब्जेक्टिव्स है उन पर बताते हैं. तो इनको जब एक बिहेवियरल चेंजेस के कारण हमें जो है ये चीज आ सकते हैं फायदा हो सकते हैं बिकॉज इट इज अ हैबिट फॉर्मिंग चीज है एडिक्शंस वगैरह जो भी है ना. तो वो हम बचपन से छोटे से हम इसको अवेयरनेस देना चाहते हैं. तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इसमें हमारे हैं. इसके अलावा जो है हम जो है एक सीबीओस वगैरह जो है ये वन इम्पोर्टेंट रोल लेते हैं क्योंकि ये जो है रिचुअल्स जो बनते हैं हर चीज का भी जो है वो जब इन्फॉर्म हो जाते हैं वे अवेयर हो जाते हैं कि अल्कोहल जब यूज करेंगे तो इससे बुरी असर पड़ जाते हैं. तो यू कैन सी फ्यू अभी अब जैसे कोई रिलीजियस लीडर्स को बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं. बहुत सारे रिलीजन ऐसे जहां पे अल्कोहल का जो है रिस्ट्रिक्शन हो गया तो फिर इनका जो है जाहिर है वो कमी हो जाएंगे पीने वाले ना. तो इस तरह का हम देखते हैं कि जहां पे भी हो हम एक इन्फॉर्म करें लोगों को और वे जो है इस चीज को यूज करने के लिए जो है वो दो बार से सोचे कि इसे हानिकारक हो सकता है. जैसे सर ने बताया कि इनके जब यूज करोगे तो फिर इनके इट डजंट कम अलोन एडिक्शन. अल्कोहल के साथ या तो स्मोकिंग के होते हैं. yes. टोबैको का भी हमारे इस चीज में काफी ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश से. तो ये चीज है कि पीते पीते या शराब पीते पीते या तो अब अल्कोहल के साथ साथ बाकी सब्सटेंस यूज भी करते हैं. तो इस चीज का भी हम एक हमारे चीफ मिनिस्टर हमारे जो है मुख्यमंत्री नशा मुक्त योजना है जो अबदास होते हैं अरुणाचल प्रदेश ड्रग्स डी एडिक्शन सोसाइटी के अंदर चलते हैं. तो इसमें भी हम जितने भी अल्कोहल के जो एडिक्शन वालों को हम उसमें इन्वाइट करते हैं बुलाते हैं फिर उनका जो भी हो नॉट ओनली अल्कोहल कोई भी चीज एडिक्शन की हो तो वो डी एडिक्शन सेंटर हमारे है अराउंड 8 or 9 states में है. तो इसमें जो है साइट अराउंड 3 जो है गवर्नमेंट रन है बाकी जो एनजीओ से. तो दिस स्टेट्स इज हेल्पिंग दोस एरिया को ना डी एडिक्शन सेंटर्स को. तो इस तरह से हम बहुत सारे चीजों से हम कोशिश करते हैं कि इट्स नॉट सम वन डायरेक्शनल नहीं है तो मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच होना पड़ेगा इस चीज के लिए. तो ये हम यही ध्यान देते हैं कि फिर हम स्कूल से हो अब चर्चेस से हो मंदिर हो या कहीं और रिलीजियस एरिया से हो इनको भी हम कोशिश करते हैं कि दे कम इन टू दैट वन एंड दे ऑल्सो गिव अवे दिस यू नो नॉलेज टू दोस रिलीजियस पीपल्स एंड अदर. सो हम बस्ती में भी जाके या गांव में भी जाके यही चीज करते हैं कि लोगों को एसिस्ट करते हैं तो ताकि जो भी हो नशा जो मुक्त हो. तो बहुत सारे हमारे जो गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज बना रहे हैं तो इस चीज को हम द ओनली थिंग्स व्हाट इस मैटर इज लाइक एक रियलाइजेशन एक टाइम पे आ जाएंगे तब मे बी लाइक दैट्स फॉर एट वन इट इज अ कंस्टेंट प्रोसेस होता है.
0: right.
2: ये एक नहीं कि हम आपके जाके कहीं भी बोल दिया तो होगा okay. वैसा नहीं है.
0: yes.
2: तो हमारा ये चैलेंजेस ये होता है कि इस चीज को हम कंस्टेंटली पुश करें इस चीज पे ना.
0: yes.
2: तो ये हमारा होना पड़ेगा कि फिर आज किया तो फिर कल बंद कर दिया ये नहीं होगा. तो हमारे हमेशा ये टॉपिक में ये रहना है कि ये नशा मुक्त होना है हमने. ये चीजों हमें इसका असर जो बुरी असर जो आते हैं इनके बारे में हमें बोलना हमेशा बोलना बताना कहीं मीटिंग पे भी हो. तो ये हमारा यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कंस्टेंटली विल इम्बाइब दिस नॉलेज टू द पीपल
0: एंड डायरेक्टोरेट इज वर्किंग ऑन दैट लाइन. ओके ओके गुड टू नो दैट सर. एक और मेरा ये सवाल रहेगा सर जैसे रिगार्डिंग अल्कोहल कंजम्पशन देयर लाइफस्टाइल डिजीजेस आर देयर. सो सर कैन यू प्लीज टेल अस व्हाट आर द डिजीजेस रिलेटेड टू अल्कोहल.
2: ओके अल्कोहल में ज्यादातर जैसे होते कि अभी बिकॉज अल्कोहल जब बोलते हैं तो फिर इट हैज मेनी अदर थिंग्स ना. तो उसमें अल्कोहल रिलेटेड जो है आपका लीवर डिजीज आते हैं
0: जी.
2: तो इसमें फिर लीवर कैंसर्स भी आते हैं ठीक है ना. तो ये बहुत सारा चीज है कि वो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, अल्कोहलिक लीवर डिजीज

0: चीज आते हैं तो इस चीज को हम रोकना है तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से आते हैं इस चीज पे ना, क्योंकि दारू या पीती है फिर इसका, अभी सर जो है बता रहे थे कि इस चीज से बहुत सारे मेंटल हेल्थ के बहुत सारे चीजें हैं जो आ सकते हैं, और इसमें फैमिली के जो है ना, इफ सी सोसाइटी में भी एक सोसाइटी के जो फैमिली के जो है वो एक नींद और उसका चेन छिन जाते हैं फैमिली में ना, ये अल्कोहल के जो चीजें होते हैं तो इससे एब्सेंटिज्म हो जाते हैं तो हमारे प्रोडक्टिविटी में कम हो जाते हैं, मैंने ये सब चीजें हैं तो ये एक साइड इफेक्ट है उसमें, इट्स एक्चुअली इट्स नॉट अ डिजीज कॉज ड्यू टू दैट अल्कोहल बट इट्स अ साइड इफेक्ट दैट इज कॉजिंग द सोसाइटी इन अ ग्रेटर वे नो। तो इस चीज को हम जैसे पहले भी मैंने बताया था कि हम नॉन कम्युनिकल डिजीज पे जो है हम इस अल्कोहल डिजीज पे हम काफी स्क्रीनिंग करते हैं, और ये नॉन कम्युनिकल डिजीज एक्चुअली इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, अभी जो है 61% ऑफ द डेथ्स आर बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकल डिजीजेस, तो इसमें जो है लीवर का जो भी एक ये भी इनका एक पार्ट है नॉन कम्युनिकल में। तो हमारे जो अभी जितने भी ये एक डिजीज जो है पैराडाइम शिफ्ट हो गया अभी कम्युनिकेबल से अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे हम जो है जोर लगा रहे हैं, और इसी पे ही बहुत सारे डेथ्स भी हो रहे हैं अभी ना। तो ये सारी चीजें जो हमें वो ध्यान देना पड़ेगा कि इस अल्कोहल से जो है खासतौर पर लीवर के जो असर पड़ जाते हैं वो हम उसको रोक सके।
1: यू मेंशनिंग अबाउट कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एक और क्वेश्चन था सर, इफ यू सी अदर स्टेट्स वहाँ पे अल्कोहल में एडल्टरेशन का बहुत प्रॉब्लम आता है एंड मेनी रिपोर्टेड केसेस, किसी का ये आफ्टर कंजम्पशन कुछ हो गया उस टाइप का बहुत सारे न्यूज आते हैं सर, हाउ इज द सिनेरियो इन अरुणाचल प्रदेश?
0: देखिए इसमें जो है हमारे जो स्टेट्स में जो है लोकल जो बनाते हैं वो राइस बियर से ही होते हैं, बाकी में क्या होता है कि वो स्पिरिटेड वाला जो ये बेर के पेड़ या कुछ किसी पेड़ का जो वहां से सीड से बनाते हैं, कोई कुछ और स्पिरिट जा ढाल के वो बनाते जो है ना, इवन आई हैव सीन लाइक इवन बैटरी के कुछ चीजें भी उसको लगाते हैं नशे लगाने के लिए, तो फिर देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो हमारे स्टेट्स में अभी तक मेरे ख्याल से टू माई नॉलेज आई हैव नॉट सीन जो एडल्टरेटेड वाला जो है वो सीन हमारे स्टेट्स में अभी मैंने अभी देखा नहीं है, बट हाँ ये मैंने कई बाकी स्टेट्स में जो है बहुत सारे मरते हुए देखा है, सुना है, पढ़ा है, तो ये हमारे स्टेट्स में तो अभी तक भी है ही नहीं।
1: ऑलराइट, आई वुड लाइक टू कम टू डॉक्टर मिश्रो अगेन सर। सर दिस फाइनेंशियल ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, देयर इज फुल फोकस ऑन यूथ, लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो यूथ है हमारा अरुणाचल प्रदेश का, वी कैन सी इन सोशल गैदरिंग्स होता है, बहुत सारे ओकेजन्स होता है, इट हैज बिकम ए फैशन टू टेक अल्कोहलिक बीवरेजेस। तो व्हाट अपील वुड यू लाइक टू गिव टू द यूथ ऑफ दिस स्टेट कि ताकि ये सब चीजों से दूर रहे?
2: यूथ को ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल लेना तो ना ऐसे आप सोशली क्यों ना हो, एक्चुअली इट्स हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ एंड माई आवर फैमिली। तो उनको ये चीज एहसास होना होगा कि हर गैदरिंग में देखा तो हमारा सोशली एक्सेप्टेबल है कि अल्कोहल लेटा करके, लेकिन एक्सेप्टेबल होने से भी अपने आप से कंट्रोल करना होगा कि मुझे अल्कोहल के अलावा कुछ तो दूसरा चीज भी है, जूस हो सकता है, टी वगैरह हो सकता है, अदर एनी अदर सोर्स है कि नॉन एल्कोहलिक वाला, एल्कोहलिक फ्लेवर में भी आजकल जूस मिल जाता है, तो वो आप ट्राई कर सकते हो इंस्टेड ऑफ अल्कोहल लेना। अल्कोहल सोशली लेने से सोशली ले लेके अभी आपका हमारा जो है एडिक्शन लेवल में जाता है एक्चुअली, तो वो भी बाद में फिर काफी कुछ प्रॉब्लम लेके आता है। तो इसलिए हमारा यूथ को एक्चुअली तो हमने बहुत देखा है, यूथ एडमिट भी होता है हमारे वार्ड पे, तो एडमिट भी होता है, तो एक बार हमने स्टडी भी किया है कि किया था हमने होल साइकेट्री पैरामीटर को हमने स्टडी किया था, उसमें भी 29.3 या 30% के आसपास जो है अल्कोहल का ही मिला था हमें, उसमें से मैक्सिमम यूथ वगैरह थे, मिडिल एज वाले मतलब प्रोडक्टिव एज ग्रुप में थे, तो अल्कोहल के कारण से नौकरी पर प्रॉब्लम में आ गया है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है ना, तो शादीशुदा में प्रॉब्लम हो गया है, डिवोर्स भी आ गया, कोई कोई तो डिवोर्स भी हो गया है, तो ये कुछ काफी प्रॉब्लम निकल जाता है। इसलिए आप सोशली क्यों, सोशली होने से भी नहीं पीना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। मैंने
1: All right. So it's not only about the mental and emotional well-being because of this addiction of society mein economic problems sab rehta hai sir. Sir, Lohan sir, what message would you like to give to general public, because in Arunachal consumption of traditional beverages and apart from that other liquors items are very common. So what message would you like to give to the public?
0: Main public ko yahi bolna chahta hu ki phir jo alcohol abhi it has a very negative effects on the body, to sharir ko jo hai hamesha positive mein to kabhi assert pata nahi, negative mein to phir isko jitne bhi rituals actually na is cheez pe bhi hum kam se kam isko istemal kare, aur bachchon ko khaas taur pe abhi parents ke sabhi ko bhi ki bachchon ko ye sab na pilaye, to ek bacche bhi jo hai wo na jaane mein pi lete hain, phir iska habit form ho jate hai chote se, jab peene se shuru ho jate hai to ritual ke roop mein, तो बड़े होके भी उनका जो आदत लत लग जाते हैं, तो हमारे एक पेरेंट्स से भी और सोसाइटी से भी एक अपील रहेगा कि आप जो भी करें आप उस एक लिमिट पर रहे, और बच्चों को खासतौर पे एक दारू और ये जितने भी सिगरेट जो पीते स्मोक्स वगैरह इनको ना करने दे, और बच्चे अब क्योंकि जब इन्फॉर्म, ये मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि इन्फॉर्म जब चीजें करते हैं तब असर पड़ता है, बिकॉज तब मालूम पड़ता है कि पीपल वॉन्ट डू दैट वन, लेकिन अब जो है इनको जो एक रिचुअल के नाम पे अब कराते हो तो एक बुरी असर पड़ जाते हैं, और सोसाइटी में एक्चुअली अब ये चल जाते तो फिर वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम सोसाइटी, वी लिव इन सोसाइटी, तो इसको जो है ये घूमते रहते हैं सोसाइटी में, और ये दारू जो है वो सोसाइटी से निकल नहीं पाएगा, तो मेरा यही ये होगा अपील होगा कि आप दारू जो है आप कम से कम इस्तेमाल करें जहां पे भी रिचुअल्स हो, और बच्चों को खास तौर पर ना पिलाए, रेस्ट्रिक्शन लगाए, यही मेरा अपील रहेगा.
1: All right. The discussion tonight reminds us that alcohol consumption is not merely a matter of personal choice, it also has implications for public health, family well-being and community development. My sincere thanks to both our panelists for your insightful thoughts and valuable time, and thanks to all our listeners for joining us on this edition of Watch Up Arunachal. Stay informed, stay healthy and take care. Namaskar.

अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। आदि श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, और इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम आज के कलाकार में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ श्रोता मित्रों, हिंदी सिनेमा की एक महान कलाकार बेबी लता से बनी हेमलता आज के जी हाँ कार्यक्रम के अंक में, जी हाँ आज हम बात करेंगे अपने मधुर मखमली आवाज से सभी पर जादू बिखेरने वाले पार्श्व गायिका यानी कि प्लेबैक सिंगर हेमलता की। भारतीय सिनेमा में उनके अनूठे गीत उन्हें अन्य गायिकाओं से अलग पहचान दिलाते हैं। जी हाँ, उनके गीत आज भी कानों में रस घोल देती हैं। आपको बता दें कि उनका जन्म 16 अगस्त 1954 को हैदराबाद में हुआ था, लेकिन उनका परिवार मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे। दोस्तों, उनके बारे में जानेंगे और भी कई सारी बातें। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कच्चे धागे फिल्म का एक गीत जिसे गाया है हेमलता ने लता मंगेशकर के साथ।

दोस्तों, हेमलता जी को बचपन से ही गायकी पसंद थी, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं किया, क्योंकि वो हेमलता को संगीत के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देना चाहते थे। पिताजी भी शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे, लेकिन ये संगीत बेटियों के लिए नहीं था। शायद ये इनके संघर्ष का सबसे कठिन दौर था। मात्र 12 साल की उम्र में ही उन्हें एक मौका मिला, जी हाँ, लता जी किशोर कुमार, हेमंत दा आदि दिग्गज कलाकारों के साथ स्टेज पर गाने का। हेमलता को जब ये मौका मिला तो उन्होंने साबित कर दिया कि उनका जन्म सिर्फ गायकी के लिए ही हुआ है। बचपन के इस छोटी उम्र में ही, जी हाँ, उन्होंने दिग्गज कलाकारों के साथ स्टेज पर गाने गाए। लोगों ने हेमलता को काफी पसंद किया। इन दिग्गज कलाकारों के साथ गाने के दौरान उनके आवाज का जादू कुछ ऐसा चला कि लोगों ने इनका नामकरण कर दिया, जी हाँ, हेमलता से, जी हाँ, बेबी लता। बेबी लता के नाम से वे मशहूर हो गई। खुद की प्रतिभा और संगीत के प्रति रुझान के चलते इन्होंने जो खयाती पानी शुरू की, उससे उनके परिवार पे भी असर शुरू हुआ। अब इनके परिवार ने इनके संगीत सीखने पर थोड़ा नरम रुख अपनाया। इनकी प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना संगीतकार नौशाद साहब ने। नौशाद पहले संगीत निर्देशक थे, जिन्होंने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया कि

हेमलता लगातार 5 साल तक इनके लिए गाएगी, साथ ही हेमलता को संगीत का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये बात फिल्म जगत में आग की तरह फैल गई और उनके घर पर बड़े बड़े संगीतकारों का जी हां लाइन लग गए। सब बेबी लता को अपनी फिल्म में गवाना चाहते थे, मगर 5 साल का लंबा इंतजार और इधर फिल्मों में तुरंत गाने का ऑफर आखिर नौशाद साहब के साथ किया गया, उनका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया और ऊषा खन्ना की फिल्म रूप रुपैया में इन्होंने अपना पहला गाना गाया। जिस दिन बेबी लता ऊषा खन्ना की फिल्म रूप रुपैया में गाना गाया, उसी दिन इन्होंने कल्याण जी आनंद जी के लिए अपना दूसरा गाना मुकेश जी के साथ गाया। तो फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश जी के साथ उनका गाया हुआ ये गीत।

जी हाँ श्रोता मित्रों, आपको फिर से एक बार बता दें कि आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम के तहत आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत की दिग्गज गायिका हेमलता की। दोस्तों आपको बता दें कि 1976 में रविन्द्र जैन ने इनसे फकीरा फिल्म के लिए गीत गवाया। जी हाँ, गाना था चल चला चल, अकेला चल चला चल। इस गाने की पॉपुलैरिटी उनके करियर का अहम मोड़ साबित हुआ। उनके करियर ने बड़ी लीग में प्रवेश किया। उसी वर्ष रविन्द्र जैन ने राजश्री बैनर के तले चित्तचोर के लिए हेमलता जी के आवाज का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि तू जो मेरे सुर में, इस गाने के लिए हेमलता जी को 1977 का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये 5 बार फिल्म फेयर के लिए नामित हुई। इस बीच इनके प्रति राजनीति का सिलसिला भी शुरू हुआ। वो उस दौर में अपना सिक्का जमा रही थी जब संगीत जगत में बड़े बड़े नाम स्थापित हो चुके थे। इसके लिए उन्हें काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इन सबके बावजूद भी हेमलता ने अपने अनूठी आवाज की गुणवत्ता पर खुद को स्थापित किया। तो चले इसी के साथ ही हम आपको सुनवा रहे हैं चित्तचोर फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

चित्तचोर फिल्म के इस खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे, जी हाँ, हेमलता और के.जे. यसुदास की आवाजों में। श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि राजश्री प्रोडक्शन के साथ उनका बहुत बड़ा जुड़ाव था। उन्होंने 80 और 90 के दशक में राजश्री प्रोडक्शन के विभिन्न फिल्मों में कई गाने गाए। जी हाँ, कोंदिशा में लेकर चला, नदिया के पार फिल्म का ये गीत, ये गाना उनके जीवन में एक और मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद इनका एक और गाना आया, अखियों के झरोखे से। जी हाँ, अखियों के झरोखों से 1978 का नंबर 1 गीत बना। आपको बता दें कि वो इस गीत के लिए फिल्म फेयर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। तो चलिए, इसी के साथ ही आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत गीत।

श्रोता मित्रों, अब बात करते हैं इनके निजी जीवन की। इनकी शादी योगेश बाली के साथ हुई, जो बाल कलाकार के रूप में प्रसिद्ध थे। आपको बता दें कि इनकी शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी नहीं चली। जी हाँ दोस्तों, बीमारी के चलते इनके पति योगेश बाली की मौत जनवरी 1988 को हो गई थी। उनका एक बेटा है जिसका नाम है आदित्य बाली। आपको बता दें कि हेमलता ने 1999 में फिल्मी दुनिया से अलविदा कह दिया। बॉलीवुड से विदा लेकर वे विदेश चली गई। 2015 में कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित इनका गाना मां मुझे आने दे चर्चा में रहा। और इसी के साथ ही ये भी बता दें कि हेमलता इन दिनों अपने करियर के दूसरे दौर में जी रही है। हेमलता न केवल अपने करियर को बल्कि जिंदगी का भी दूसरा दौर जी रही है। इन्होंने दिलीप सेन गुप्ता से शादी की। दिलीप के साथ अभी वे खुश हैं। कई सालों से संगीत दुनिया से दूर रहने के बाद इन दिनों अपने पति की संगीत कंपनी में योगदान दे रही हैं। आपको बता दें कि हेमलता ने करीब 40 भाषाओं में 5,000 से अधिक गाना गाए हैं। करीब 3 दशक तक इन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक नगमे दिए, जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। तो चलिए इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवाते हैं उनकी आवाज में अगला गीत।

आप तो ऐसे न थे, फिल्म का ये खूबसूरत गीत हेमलता की आवाज में आप सुन रहे थे। जी हाँ श्रोता मित्र, इसी के साथ ही हिंदी सिनेमा जगत की दिग्गज पार्श्व गायिका हेमलता पर आधारित कार्यक्रम आज के कलाकार का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। आपको बताते हैं कि कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे निशेष श्रोताओं का समाचार। फिलहाल आनंद लीजिए इस खूबसूरत गीत का।

अभी आप सुन रहे थे निश्चित श्रोताओं का समाचार। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि निश्चित श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे जारी रखने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स तथा DRM 666 किलो हर्ट्स पर अभी जुड़ सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्रों, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 MHz से, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हिंदी फिल्मी गीतों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। और इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:08 हो रहे हैं। श्रोता मित्रों, हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, गुरु फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने।

इस खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे गुरु फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज में। श्रोता मित्रों, इस खूबसूरत गीत के साथ अब हम आपको सुनवाना चाहते हैं एक छोटी सी प्यारी सी प्रेरणादायक कहानी। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद एक ऐसी चीज है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है। जी हाँ, ये कहानी भी एक ऐसी उम्मीद के बारे में ही है। एक दिन एक लड़की ने अपने पापा से कहा कि चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं। पापा ने अपनी बेटी की बात मान ली और दोनों साथ में निकले। बेटी ने पापा से कहा कि इस बार मैं कार चलाऊंगी। फिर इस पर उनके पिताजी ने जी हां कहा, अच्छा ठीक है बेटा, तू चला लेना। बाप बेटी दोनों निकल पड़े। बीच रास्ते में एक भयंकर तूफान आया और लड़की ने अपने पिताजी से पूछा, अब हम क्या करें? पिताजी ने अपनी बेटी को जवाब दिया, बेटा तुम कार चलाती रहो, तूफान में कार चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और तूफान भयंकर होता जा रहा था। लड़की ने फिर अपने पिताजी से पूछा, अब मैं क्या करूं? उसके पिताजी ने उसे फिर से वही जवाब दिया, बेटा कार चलाते रहो। थोड़ा आगे जाने पर लड़की ने देखा कि रास्ते में बहुत सारे वाहन तूफान की वजह से रुके हुए थे। दूसरों के वाहन रुके हुए देखकर जी हां बेटी ने फिर अपने पिताजी से पूछा, क्या मुझे भी अपनी कार रोक देनी चाहिए? उसके पिता ने कहा, बड़ी मुश्किल, उसके पिताजी ने कहा, तुम कार चलाते रहो। उसने ये भी कहा कि पिताजी, बड़ी मुश्किल से मैं देख पा रही हूं। उसके पिता ने उसे फिर से वही कहा, बेटा कार रोकना नहीं, बस धीरे धीरे चलाते रहो। अब तो उस तूफान ने बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लिया था, किंतु बेटी अपने पिताजी की जी हां बेटी ने अपने पिताजी की सुनी और कार चलाना रोका नहीं। अचानक ही उसने देखा कि अब थोड़ा थोड़ा थोड़ा साफ दिखने लगा है। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद बेटी ने देखा कि तूफान अब थम गया और रोशनी भी दिख रहा है। उस जी हां बेटी ने पिताजी से अब कहा कि जी हां पिताजी ने बेटी से कहा कि तुम अब चाहो तो बाहर आ सकती हो। बेटी ने पूछा, पिताजी पर अब क्यों? जी हां पिताजी ने उसे कहा कि जब तुम बाहर आओगी तो देखोगी कि जो राह में रुके हुए थे वे सब अभी भी तूफान में फंसे हुए हैं। तुमने कार चलाने के प्रयत्न को नहीं छोड़ा, इसलिए तुम इस तूफान से बाहर हो। दोस्तों, बुरा समय सभी की जिंदगी में आता है। बुरे समय में मजबूत से मजबूत इंसान भी प्रयास छोड़ देता है। उस बुरे समय में हमें प्रयास कभी छोड़ना नहीं चाहिए। प्रयास करते रहने से जिंदगी में कठिन से कठिन समय गुजर जाता है और अच्छा समय जल्द से जल्द आता है। हमें निराश नहीं होकर डटे रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी प्रेरणादायक कहानी, उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत राजी फिल्म से।

श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गीत। जी हाँ, इस गीत को आप सुन रहे थे माय नेम इज खान फिल्म से, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा ने। तो चलिए, इसके साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में हम ले रहे हैं एक अंतराल।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे परम सुंदरी फिल्म के इस गीत को सोनू निगम और कृष्णा कली साहा की आवाजों में। आपको बता दें कि हिंदी फिल्म में गीतों का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। इससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आपको बता दें कि आगे आप सुन पाएंगे कभी कभी फिल्म के सदाबहार गाने बैक टू बैक।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्रों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कभी कभी फिल्म के सदाबहार गाने। इस गीत को आप सुन रहे थे लता मंगेशकर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोता मित्रों, आप आनंद ले रहे थे कभी कभी फिल्म के सदाबहार गीतों का। जी हाँ दोस्तों, इस आखिरी गीत का आप आनंद ले रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। इसी के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात के ठीक 8 बज रहे हैं और इसी के साथ ही अपने प्रदेश यानी कि अरुणाचल प्रदेश के संगीत पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत जी हां आगे आप सुन पाएंगे।
1: नमस्कार, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज सुनने वाले सभी श्रोताओं को गैर अतः का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, आपके लिए आज फिर मैं लेकर आई हूँ अपनी मिट्टी की खुशबू यानी कार्यक्रम अपना गीत, जिसमें हम सुनाते हैं अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग समुदायों के गीत। तो चलिए एक पल भी देर किए बिना शुरू करते हैं कार्यक्रम अपना गीत और सुनते हैं ये आदि गीत जिसे गाया है हम सबके फेवरेट तालुत मिजे ने।

तलुत मिजे सर, आपकी आवाज और गीत हमेशा यही फील कराते हैं कि आप हमारे सामने खड़े हैं और हम गाना के जरिए आपसे बात कर रहे हो। तो दोस्तों, अपना गीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, आप पता नहीं की। ये गीत है भाई बहन के रिश्ते का, भाई बहन के प्यार का। भाई अपनी बहन से दूसरों की चीजें न ललचाने की बात करते हुए उन्हें वो सब देना चाहते हैं जो उनके पास में है। इस गीत को गाया है अपातानी के मशहूर गायक हागे तादा ने।

श्रोता, इस गीत से एक बात जरूर कहना चाहूंगी। जब हम अपनी कैपेसिटी से आगे बढ़ने लगता है, खासकर रुपए पैसे के मामलों में, तो कई बार हमारी जरूरत को फुलफिल करने के चक्कर में हम गलत कदम उठा लेते हैं और जब समझ आती है तब बहुत देर हो जाती है। इसलिए मेहनत से हम जितना भी कमाते हैं, जितना भी पाते हैं, उतने में खुश रहने में ही सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत अरुण FM 103.1 MHz पर अपने रेडियो साथी गैर के साथ।

0: दोस्तों, माता पिता हमारा पहला गुरु और हमारा वजूद होता है। चाहे हम कहीं भी रहे, अपने दिल से अपने माता पिता का प्यार और ख्याल कभी नहीं खोना चाहिए। इसी तरह अपने माता पिता के लिए अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करते ये वांछो गीत आप सुन रहे थे भौतिक लोकम की आवाज में। तो आइए अपना गीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं नक्कन हंसिक
1: की आवाज में, तुत्सा गीत।

कार्यक्रम अपना गीत, जिसमें आप आनंद लेते हैं आपका अपना राज्य अरुणाचल प्रदेश के गीतों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, जहां एक खूबसूरत लड़की को मर्द अपने बहकने की वजह मानते हैं, वजह बताते हैं। जी हाँ श्रोताओं, ये है गालो गीत हम सब के चहेते, जेली काई की आवाज में।

श्रोताओं, जेली काई द्वारा गाए इसी गालो गीत के साथ अपना गीत कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता मित्रों को कार्यक्रम पसंद आए होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे सप्ताह में 3 बार यानी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को। तो मिलते हैं अगले अंक के साथ, तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे अरुणाचल प्रदेश के विविधता को दर्शाता कार्यक्रम अपना गीत। आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि 8:30 पर आप सुन पाएंगे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। फिलहाल कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: That is all for today, listeners. I hope you all enjoyed the songs today and that you'll catch us back tomorrow only on Akashvani Itanagar. This was your host, Sam, signing off for the day. Goodbye.
1: श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपको बता दें कि इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात के ठीक 9 बज रहे हैं और इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। श्रोता मित्र, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम उन बेहतरीन गीतों का खजाना है जो शायद हमारी यादों में धुंधला पड़ गया है। चलिए इस कार्यक्रम के बहाने उन गीतों को अपनी यादों में, अपने वर्तमान में एक बार फिर गुनगुनाते हैं और उस दौर को फिर से जीते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, मेरे सनम फिल्म से। धुन दिया है ओपी नैयर ने, गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने। गीत के बोल हैं, देखी तेरी सूरत जो इतने करीब से, घिर गई मैं तो ख्यालों में अजीब से, दिल पे क्या बीती ना पूछो ये गरीब से।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे मेरे सनम फिल्म के नगमे। आपको बता दें कि इस गीत को आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। चलिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत गंगा की लहरें फिल्म से।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप आनंद ले रहे हैं भूले बिसरे गीतों का। अब अगला गीत

लता मंगेशकर और कोरस की आवाज में फिल्म मधुमति के गीत का आप आनंद ले रहे थे। श्रोता मित्र, इस गीत के साथ अब हम कार्यक्रम भूले बिसरे गीत की समाप्ति पर आ पहुंचे हैं और आप सभी से विदा लेने का समय भी हो चला है। दोस्तों, इस तीसरे प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ बने हुए थे प्रसारण निष्पादक पी तोले तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम और साथ ही हमारे अन्य सहकर्मी। श्रोता मित्रों, जाने से पहले ये भी बता दें कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से एफएम गोल्ड के कार्यक्रमों को, तो आप जुड़े रहें अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे कल प्रातः 5:48 पर हमारी पहली प्रसारण सभा के तहत। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी नीलम को दीजिए अनुमति। आप रखें अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: को किस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, ढांचागत विकास की उन्होंने बात की, डिजिटल सेवाओं की बात की, वेलफेयर स्कीम्स की बात की, आप इसके बारे में और क्या जोड़ना चाहेंगे?
1: पिछले 12 साल जो काम हुए हैं राजग काल में, एनडीए के काल में, उसकी जो बात की वो तो की उपलब्धियां गिनाई। ये उपलब्धियां मुझे लगता है कि दो स्तर पर दिखी। एक तो कि जो जमीन पे जो चीजें आपको बदलती हुई दिख रही हैं वो, कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, और दूसरा है सोच के स्तर पर बदलाव कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। जो जो पहले की सरकारों में 60 सालों में जिस तरफ हमारा, जिस सेक्टर पे फोकस नहीं होना चाहिए था और नहीं गया, उसको कैसे सुधारना है, वो एक लेवल वो था कि कैसे बदलना है। और जो तीसरा जो एक लेवल था जो मुझे दिखा, और प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बात भी की, वो ये है कि भारत की जो 140 करोड़ जनता है उसके मन और दिमाग में कुछ चीजें असंभव सी थी जो कि बैठी हुई थी कि ये चीजें असंभव है, बाकी चीजें तो हम करेंगे। उस असंभव को पार करना, जिसमें कि उन्होंने फिर वो 370 और 3 तलाक, जो इस तरीके की बात की जो समाज से भी जुड़ते थे, देश की सुरक्षा से भी जुड़ने वाले इशू थे, और जो आम जन की जनभावना से जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो, तो ये 3 तरीके के बदलाव जो पिछले 12 साल में हुए, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री ने इस पे बहुत खुल के बात की।
0: आशुतोष जी, अगर हम खासतौर से बात करें आर्थिक प्रगति की, हम सभी देखते हैं कि किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, निवेश की बात करें, डिजिटल पेमेंट की बात करें, और खासतौर से पूरी दुनिया में भारत ने अपनी एक जगह बनाई है, और न सिर्फ एक जगह बनाई है, हमने लगातार कोशिश की है इस सरकार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि हम बाकी दुनिया से एक कदम आगे चलें। तो आइए सुनते हैं इस बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कॉम्पिटिशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है, और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतर कर दिखाना है। हमें यह समय गंवाना नहीं है, और मैं बार बार कहता हूँ यही समय है, सही समय है। हमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है। हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है।
0: तो आशुतोष, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अगर हम देखें कि किस तरह से जो देश का विकास हुआ है और जो 2047 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, क्योंकि 100 साल हमारे देश की स्वतंत्रता के हो जाएंगे, और उसमें आर्थिक विकास से लेके जो टेक्नोलॉजी का विकास है, जो सोशल इंक्लूजन की बात है, सामाजिक समावेश की बात है, और एक अच्छे प्रशासन और गुड गवर्नेंस की बात है, इस बारे में आप आशुतोष जी और क्या

0: जानकारी देना चाहेंगे।
1: आज देश को किस चीज की जरूरत है? अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, जो बात हो रही है ना कि पश्चिम एशिया का संकट आया और पूरे विश्व पे इस संकट का असर दिख रहा है, जहां पर विपक्ष में बैठे लोग कुछ ज्यादा उसे तूल दे रहे हैं, ऐसा लगता हो कि सिर्फ इंडिया का वो एक इशू है, लेकिन फिर भी जो समस्या अभी आपको दिख रही है ये और कम दिखती अगर कुछ कदम पहले उठाए गए होते, जिसका कि जिक्र अभी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया था। और उन्होंने कहा था कि भाई जो सप्लाई चेन में जो इंडिया का कई बार दिखता है कि हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, ये कोविड के टाइम में भी ये चीजें दिखी थी और अभी भी चीजें दिख रही है, वहां कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में मुख्य भूमिका में इंडिया को आना है। एक टाइम आप याद कीजिए कि कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जहां हम पहले से मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जैसे कि दवाइयां, ये 80-90 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे उस समय कुछ इस तरीके से निर्णय लिए गए कि भाई हम मार्केट इकोनॉमी में किस तरीके से घुस जाए, और हम वहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो उस समय में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार खड़ा करना था वो नहीं किया गया। अब शुरुआत हो रही है इसकी, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने बहुत लंबे तरीके से किया और मुझे वो चीजें बहुत सही लगी आज के परिप्रेक्ष्य में कि क्यों नहीं भारत हर मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है, जिसकी बात उन्होंने की। ये आत्मनिर्भरता ही जो है वही कड़ी है और वही आप समझिए सबसे बड़ी कुंजी है, जिसमें कि आप वित्तीय रूप से बहुत संबल, जो बात हो रही है ना बार बार विकसित भारत बनने की,
0: जी जी
1: विकसित भारत ऐसा नहीं है कि एक शब्द में जुड़ के कहीं खत्म हो जाए, कई लेवल पे जो स्टेप्स लेने हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बात की कि भाई ये ग्लोबल सप्लाई चेन बनना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना है। आज से 8-9 साल पहले तक आप याद कीजिए तो यहाँ आपके हाथ में, हमारे हाथ में जो भी फोन है वो बाहर से ही आ रहे होंगे कहीं ना कहीं से। अब स्थिति बदली हुई है कि आज अमेरिका वहां के जो यूजर है उसमें से एक फोन मेड इन इंडिया हो रहा है। ये जो बदलते हैं माहौल, उसकी बात उन्होंने की कि हमें किस तरीके से आर्थिक पावर के रूप में उभरना ही पड़ेगा, यही सबसे बड़ी कुंजी है। उसी के साथ समाज का भी ग्रोथ होगा। भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है उसमें वेलफेयर स्टेट का जो एक बहुत बड़ा बोझ होता है, आप जान रहे हैं कि आज के दिन हम लोग करीब करीब 4-4.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में देते हैं, आखिर कहां से कर पाएंगे अगर जब तक आप एक आर्थिक ताकत के रूप में नहीं उभरेंगे। और आर्थिक ताकत के रूप में उभरने के लिए इसकी भी जरूरत है, और साथ ही साथ सभी राज्यों को भी लेना चाहिए जो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन की बात है।
0: जी जी,
1: कि भाई ये हेल्दी कॉम्पिटिशन सिर्फ राज्य और राज्य में ना हो, ये हेल्दी कंपटीशन गांव से शुरू हो सकता है कि एक गांव दूसरे से कम्पीट कर रहा हो कि हम अपने गांव को कैसे ज्यादा बेहतर बना पाए, एक शहर दूसरे से कम्पीट कर रहा हो कि हम कहां पर ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए। और उन्होंने कहा कि राज्यों को तो ये कम्पीट करना चाहिए कि भाई आने वाले टाइम में हु विल बी द फर्स्ट स्टेट जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्टेट होगा।
0: तो आशुतोष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया और प्रधानमंत्री ने सहभागिता की बात भी की, क्योंकि उनका ये मानना है जैसा कि आप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि सारी जनता मिलके और सारे राज्य मिलके ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक जन विश्वास की जो बात है, जन भागीदारी की बात है, इस पर प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति, ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे हैं। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा, देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजेक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। मैंने कोरोना महामारी के दौरान एकजुटता का, संयम का आग्रह किया, देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। आने वाले समय में भी इसी जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है।
0: आशुतोष जी, जैसा कि अभी हमने सुना, प्रधानमंत्री ने इसके अलावा हाउसिंग की बात की, वित्तीय समावेशन की बात की, सफाई का भी जिक्र किया, स्वास्थ्य का जिक्र किया। खास तौर से जिस तरह से गरीबी उन्मूलन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े हैं और काफी लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश की है, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
1: न सिर्फ गरीबी से, जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, और साथ में उन्होंने कहा कि हमें इसका विशेष प्रयास करना चाहिए, एक साथ मिल करके प्रयास करना चाहिए कि ये फिर से उस गरीबी के दलदल में ना जाए। देखिए

0: सबसे बड़ी समस्या यही होती है जब आप इस तरीके की योजनाओं पे काम करते हैं, स्लिपेज की बात, कि आपने कुछ चीजें ठीक की और वो फिर से धीरे धीरे वहीं चला जाए, तो वो प्रयास वहां पर विफल होता है। और देखिए, ये गरीबी की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा कारक हुआ करता था वो है बीमारी, कि एक बार कोई घर में एक बीमार हो गया किसी गरीब के घर, और वो फिर से लोन और इसके दुष्चक्र में फंसता हो वहीं जाता था। बीमारी को लेकर के सरकार ने पहले ही एक कदम उठाया, आज से 5 साल 6 साल पहले जब आयुष्मान योजना की बात हुई थी, उससे बहुत सारी चीजें सुधरी थी। और ये जो 25 करोड़ का आंकड़ा अभी आ रहा है कि इतने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, वो नियो मिडिल क्लास में और थोड़ा सा उससे नीचे में प्रवेश कर चुके हैं, अब उनकी आकांक्षाएं और बढ़ रही है। ये आकांक्षा बढ़ना ही जो है विकसित भारत के लिए जरूरी है।
1: जी। और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरह से कुछ समय पहले हमारी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब हम बहुत ही त्वरित गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था की स्थिति में पहुंच गए हैं। और जैसा आपने भी इसका जिक्र किया कि किस तरह से 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाला है, और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि किस तरह से एक ऐसा भारत बनाया जाए जहां गरीबों के सपने भी पूरे हो पाए, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: जैसा कि हमने सुना, आशुतोष जी, जो प्रधानमंत्री ने कहा, वो एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं कि जब 100 साल पूरे हों देश के, तो एक नए तरह का भारत हो जो बहुत विकसित हो और विकसित श्रेणी और विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो पाए। आप इस बारे में क्या और कुछ जानकारी देना चाहेंगे?
0: ये जो विकसित भारत की कल्पना की गई, और उसी समय ये भी है कि विकसित भारत क्या होगा। विकसित भारत का अर्थ ये है कि एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में भारत खड़ा होगा, एक आत्मनिर्भर देश के रूप में भारत खड़ा होगा। भारत की तुलना आप किसी छोटे कंट्री से नहीं कर सकते। बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जहां की जनसंख्या आप देख लें तो वो पूरे के पूरे भारत में समाएंगे। तो यहाँ की सोच अलग है और उसी तरीके से इसका ग्रोथ किया जा रहा है। मुझे लगता है जो उन्होंने बात कही दिशा सही है
1: जी,
0: थोड़ी गति की बात है जो उन्होंने कही, जहाँ हमें गति और बढ़ानी है और जिसमें सबके प्रयास की बात की उन्होंने, ये दोनों चीजें होंगी तो मुझे लगता है दिशा और गति दोनों मिलकर जो है सो इच्छित परिणाम के देंगे।
1: आशुतोष जी, एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही कि किस तरह से सरकार ने विकास के लिए जो भी जरूरी फैसले हैं वो समय पे लिए, चूंकि राजनीतिक स्थायित्व तो है और सरकार के पास ये इच्छा शक्ति है कि वो देश को विकास की ओर आगे ले जाना चाहती है। तो सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: आशुतोष जी, आप और क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो बात की कि देश हित में जो भी फैसला जरूरी होगा वो ये सरकार करेगी, जिससे कि देश विकास की दिशा में आगे बढ़ पाए।
0: मैं आपको एक तो एग्जाम्पल दूंगा
1: जी,
0: 370 की बात इन्होंने की, और आपको याद होगा कि जब 370 हटाया गया था तो उस समय में किस तरीके की बातें कही जा रही थी। मैं अभी अभी कश्मीर से लौट के आया, बारामूला और शोपियां जैसे जिले, आप वहां भी खुलेआम घूम सकते हैं एक सामान्य नागरिक की तरीके से, वो भी कश्मीरी नहीं, आप बाहर से जाकर के घूम सकते हैं और सुरक्षित घूम सकते हैं, लोग खुश हैं। उसी तरीके से जो 3 तलाक वाली जो बात कही, सरकार का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो आपको नौकरी देते हैं, सरकार का काम ये भी होता है कि वो इस तरीके के प्रयास करे कि समाज में भी बदलाव आए।
1: जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग

विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी स्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस की राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया के दौरे पर भी रहेंगे। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीकों की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी शर्मा ने मालविका

0: भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। भारत ने ओमान तट पर तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ईरान द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल और गैस उद्योग पर नियंत्रण करने की धमकी दी। रक्षा निधि के मुद्दे पर जॉन हीली ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और फीफा विश्व कप 2026 आज रात मैक्सिको सिटी के स्टाडियो एस्टेका में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। हाल ही में भारत के कई देशों के साथ संपन्न व्यापार समझौतों पर प्रधानमंत्री ने राज्यों को युवाओं और लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए अवसर सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत को सम्मेलन में भागीदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। श्री जॉर्ज ने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री कई विश्व नेताओं के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
1: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
2: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
0: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया।
3: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
4: पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन।
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेटेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान पर बड़े हमले करने और उसके तेल तथा गैस उद्योग के प्रमुख हिस्सों पर नियंत्रण लेने की धमकी दी है, जिससे पश्चिम एशिया में बड़े संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। उन्होंने सोशल मीडिया

0: इंडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका आज रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है, साथ ही खार्ग द्वीप सहित उसके तेल गैस बाजारों पर पूरा नियंत्रण कर लेगा। ट्रंप ने इस कदम की तुलना वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर अमरीकी नियंत्रण से की। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमरीका और ईरान लगातार दूसरे दिन हमले कर रहे हैं। बताया गया है कि ईरान में अमरीका के हमले पहले से अधिक तेज रहे। इस बीच ईरान ने जवाबी कार्रवाई में होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र अफगान सहायता मिशन यूएनएएमए ने पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों के बाद तनाव कम करने और स्थायी युद्ध विराम की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इन हमलों में 13 नागरिकों की मौत हुई। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में यूएनएएमए ने कहा कि 9 और 10 जून की रात खोस्त, कुनार और पक्तिका में हुए हवाई हमलों में 13 नागरिक मारे गए और 10 घायल हो गए। इनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। यूएनएएमए ने सभी पक्षों से तनाव कम करने, स्थायी युद्ध विराम स्थापित करने, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सीमा चौकियां खोलने की अपील की ताकि मानवीय सहायता और बातचीत संभव हो सके। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में सरकार पर अनिच्छा का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को लिखे अपने इस्तीफे पत्र में जॉन हीली ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने सरकार की रक्षा निवेश योजना के तहत आवश्यक धनराशि देने से इनकार कर दिया है, जिसके कारण उनके पास मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इससे पहले ब्रिटेन के रक्षा और वित्त मंत्रालय सैन्य खर्च में वृद्धि की बढ़ती मांगों को पूरा करने के तरीकों पर महीनों से बातचीत कर रहे थे, जिसके चलते रक्षा निवेश योजना के प्रकाशन में पिछले साल से देरी हो रही है। ये देरी ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में संघर्ष चरम पर है और अमरीका यूरोप की सुरक्षा से अपना ध्यान हटा रहा है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच आज रात 12:30 बजे से मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के यूरोप स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने गर्मी से स्वास्थ्य संबंधी कार्य योजना के अद्यतन दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो विश्वभर की सरकारों को गर्मी से बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने के लिए एक वैज्ञानिक ढांचा प्रदान करते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। भारत ने ओमान तट पर तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। रक्षा निधि के मुद्दे पर जॉन हीली ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और फीफा विश्व कप 2026 आज रात मेक्सिको सिटी के स्टाडियो एस्टेका में शुरू होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am R.S. Raghu with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's growth story continues to inspire the world as major economies are facing